0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अर्शिता नमस्कार
1: नमस्कार 5 जुलाई 2026 की प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज़ में आप सब लोगों का स्वागत है सबसे पहले हम फीफा वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बाप्पे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा और अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा याद रखें कि मोरक्को ने प्री क्वार्टर फाइनल में समेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश कर लिया है बजट 2026-2027 पर इबेन साइबर सिटी में युवाओं उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का आयोजन किया गया युवाओं ने रोजगार कैरियर के अवसर और क्रय शक्ति बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं सीधे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखी बजट 2026-2027 पर आए जिस संवाद इस संवाद सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर विशेष चर्चा भी हुई सरकार ने कहा कि एआई को रोजगार के खतरे की बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और मॉरिशस इसे क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित कर सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मॉरिशस ने समावेशी और न्याय संगत डिजिटल परिवर्तन की वकालत की है भारत और मॉरिशस ने रोजगार कौशल विकास सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है Front militant progressiste ne Kenita Paul Béranger ne Finance Bill 2026-2027 ko aam parivaron aur laghu evam madhyam udyamon ke liye nuksandayak bataya hai unhone sarkar par sarvabhaumik pension ke mudde par janta ko gumrah karne का आरोप लगाते हुए देश में महंगाई और आर्थिक ठहराव की चेतावनी दी है और आज 5 जुलाई को क्यूपिप के सेंट थेरेज गिरजाघर में तीसरी मैस डिजॉर्टिस का आयोजन किया जाएगा इस विशेष प्रार्थना सभा में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और समाज में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई दी जा रही है तेहरान में फिलहाल उमड़ा हुआ है जन सैलाब और उधर यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल और नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया है राष्ट्रपति वोलोदिमिर

0: ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
1: Your weather forecast.
0: हाल आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवा का असर है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा और दिन के दौरान भी आसमान, रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा, पर दोपहर बाद सिवाय उत्तरी इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान बादल घिराएंगे और दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा और रात के दौरान स्थिति खराब होगी और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। रात के दौरान खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़ा एक जोरदार एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से हमारे इलाके की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण ठंड हवा का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले मंगलवार से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नोट की जाएगी। और सूर्योदय आज सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर।

सदकल्लाहु अज़ीम। सामीन, अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की। पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत करते हैं।

महतरम सामीन, गुस्सा न करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न करो। उसने कई मरतबा यही सवाल किया और हर मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी का एक अजीम उसूल बयान फरमाया, गुस्सा इंसान को अक्ल व हिकमत से दूर कर देता है, इसलिए मोमिन को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को पिछाड़ दे, बल्कि हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। इस्लाम जिस्मानी ताकत से ज़्यादा अखलाकी ताकत को अहमियत देता है। जो शख्स गुस्से के वक्त खामोश रहता है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा मज़बूत और कामयाब है।

मोहतरम सामीन, गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले गुस्से करने वाले को जलाती है, फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। कितने ही घर, रिश्ते और दोस्तियां सिर्फ चंद लम्हों के गुस्से की वजह से तबाह हो जाती हैं। शैतान इंसान को गुस्से के ज़रिए गुनाहों में मुब्तिला करता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए तो फौरन अल्लाह ताला को याद करें, खामोश हो जाएं, वुज़ू करें और अपनी ज़बान को काबू में रखें। याद रखें कि एक लम्हे का सब्र ज़िंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। अपने बच्चों, अहले खाना और माशरे के साथ नरमी अख्तियार करें। अल्लाह ताला नरम दिल बंदों को पसंद फरमाता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हुस्न अखलाक और ज़ब्त नफ्स की दौलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, सबल खैर प्रोग्राम करीब ख़त्म होने वाला है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नज़ारा पेश करते हैं। इसी के साथ सबल खैर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 94.96
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jani Sayarangam.

0: सरेशोद नमी राबू ये पाट डेडी के चेस्तुनाम तु सरीका सर्वेशी शेला राधा मीनाक्षी वे हैविंग मेघना विश्वानी उचमा फैमिली नायडू प्रीति भिवेश योवेश अपडू फैमिली एंड होल चेंगाडू आनंद एंड चान हैव ए वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू.
1: Okay, this is DSP presenting KING, the King.

चलिए श्रोताओ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। इस समय से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। तो चलिए आपके नाम हम करेंगे चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान। हमेशा की तरह कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। तो चलिए आपके हम लाए हैं भगवान

है कि भगवान सूर्य जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती है, तो चलिए उन्हीं के नाम जो है हम एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है हम चलाएंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये रेडियो मनोरंजन है, इस समय जो है हम चंद प्यारे प्यारे भक्ति गीत आपकी सेवा में चला रहे हैं। तो चलिए हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही प्यारा सा चालीसा भगवान सूर्य पर आधारित। और आपको पता है चालीसा का पाठ पढ़ने से मन में अपार शांति की अनुभूति हमें होती है।

चलिए श्रोताओ, 10:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आज है रविवार। रविवार का दिन समर्पित है भगवान सूर्य को, और आपको पता

चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वैसे जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में, आज है रविवार। रविवार का दिन हम बात करते हैं भगवान सूर्य के बारे में। सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक तारा नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने वाली दिव्य शक्ति है। हर नई सुबह हमें यह संदेश देती है कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, उजाला लौट कर जरूर आता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: श्रोताओं,
1: आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। जिस तरह सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, उसी तरह ज्ञान, विश्वास और अच्छे कर्म जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देते हैं।

तो चलिए श्रोताओं, आज का दिन आपके लिए बेहद ही खुशगवार हो, हमारी यही कामना है। वैसे सूर्य को अर्घ्य देना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम भी है।

श्रोताओ, कार्यक्रम का समापन जो है हम एक आरती के साथ करेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11:30 बजने वाले हैं और आप चीनी भाषा में कार्यक्रम होंग होंग के साथ सुन पाएंगे। हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार, शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं आशिता से संक्षिप्त समाचार.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. बजट 2026-2027 को लेकर आयोजित एक संवादात्मक सत्र का एक अन्य प्रमुख विषय भविष्य की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका रहा. यह सवाल भी उठाया गया कि क्या एआई रोजगार के लिए खतरा बन सकता है. इस पर वित्त मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामोही ने कहा कि जोखिम को अवसर में बदलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि ये तकनीकी क्रांति देश के लिए विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों का बड़ा माध्यम बन सकती है. बजट 2026-2027 को लेकर ही कल जो इबेन साइबर सिटी में संवादात्मक सत्र लगा, उसमें विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक सत्र आयोजित किया गया. इस अवसर पर जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामोही, फैबुज दाविद और सांसद कविराज रुकनी भी मौजूद रहे. प्रतिभागियों ने रोजगार सृजन, करियर में आगे बढ़ने के अवसर, क्रय शक्ति में सुधार तथा युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सीधे उनके सामने रखे. पुल बेरांजे ने फाइनेंस बिल 2026-2027 का आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का दावा किया है. ये दावा फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस के नेता पुल बेरांजे ने कल आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया. उनका कहना है कि स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि ठहर जाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया. पिछले जून में जिनीवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान मॉरिशस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर अधिक समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया. श्रम एवं औद्योगिक संबंध मंत्री रिजा उतीब ने रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता भी

रेखांकित की। और बात करें अब फीफा विश्व कप 2026 की, राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बापे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा। अब फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बॉस्टन में मोरक्को से होगा। मोरक्को ने राउंड ऑफ 16 में सह मेजबान कैनेडा को 3-0 के स्कोर से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया है। अब राउंड ऑफ 16 में ही अगले मैच जो निर्धारित हैं, आज रात 12 बजे ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ, मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड होगा कल सुबह 4 बजे, और कल रात 11 बजे पुर्तगाल खेलेगा स्पेन के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संयुक्त राज्य अमरीका ने देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ आतिशबाजी, हवाई प्रदर्शनों और विभिन्न समारोहों के साथ मनाई। हालांकि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और खराब मौसम का असर भी देखने को मिला। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में आयोजित समारोह में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन ड्रीम वापस आ गया है। इसके बाद देश के इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रदर्शनों में से एक का आयोजन किया गया। 4 जुलाई का ये राष्ट्रीय अवकाश वर्ष 1776 में 13 अमरीकी उपनिवेशों द्वारा ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में मनाया जाता है। इस बीच राजनीतिक रूप से विभाजित अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना भी हुई। उन पर 250वीं वर्षगांठ के समारोहों को अपने इर्द गिर्द केंद्रित करने और कांग्रेस द्वारा आयोजित आधिकारिक अमेरिका 250 कार्यक्रमों से अलग फ्रीडम 250 अभियान शुरू कर इस अवसर का राजनीतिकरण करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: Choc sans chassonnier. Mon Tristan pesé, petite rivière, mais mon Tristan pesé. Pesette, petite rivière, mais tirassi sale. Qui est de triazol qui chimati Raywanti Tilak, Shrimati Raywanti Tilak, जिन्हें दानों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे दिलीप कुमार तिलक के घर मोंट ट्रिस्टन पेजेट पेटिट रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जब 12:10 हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर, जरा रुक कर हमारा साथ दीजिएगा। मौसम है दीवाना, मौसम है मस्ताना, मौसम है आशिकाना और दिल है दीवाना। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। मॉरिशस के सभी प्यारे श्रोताओं को हमारा स्नेह भरा प्रणाम है और मैं हूँ दीवीना। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा चहेता संगीतमय कार्यक्रम सुहाना सफर, ओनली ऑन MBC रेडियो मनोरंजन, आप सबों के साथ। और आज है स्पेशल संडे आफ्टरनून शो। वैसे रविवार का ये खूबसूरत दोपहर लेकर आई है ढेर सारी मधुर यादें, सदाबहार नगमे, दिल को छुलने वाली बातें तथा बॉलीवुड संगीत का ऐसा खजाना जो आपके दिन को और भी रंगीन बना देगा। तो मुस्कुराइए दोस्त, अपने परिवार के साथ आराम से बैठ जाइए। आप लंच रहे हैं तो बना पेची शुभ आहार। कुछ लोग जो हैं अभी बाहर हैं, घूम रहे हैं और मौसम ऐसा है कि कुछ लोग, हालांकि कुछ सर्दी का मौसम है मगर आज इतनी ठंडी है, बस कुछ गर्मी है। तो बस गर्मा गर्म लंच लीजिएगा, सिसार जा सकते हैं या फिर ऐसे ही बैठ जाइए कहीं और हमें सुनिएगा यहाँ पर ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन पर। बस ये अगला गाना आप सबों के लिए और इसके बाद हम आपसे कहेंगे कि आज स्पेशली कौन से कलाकार पर एक दो गाने हम चलाने वाले हैं यहाँ पर।

0: सुहाना सफर
1: जहाँ बैठिए कुछ ठहर जाइए। आज है रविवार, संडे है 5 जुलाई 2026 और रविवार के दिन जो है आप यहाँ इधर उधर मत भागिए क्योंकि सप्ताह भर आप तो भागते ही हैं, हमेशा रश में होते हैं। आज के दिन तो बस आप थोड़ा सा आराम कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। हमेशा की तरह आफ्टरनून शो जो है लेजी आफ्टरनून शो हम चलाते हैं 12 बजे से 3 बजे तक। फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम है सुहाना सफर और आज कुछ स्पेशल होता है संडे को और हमारी कुछ दोस्तों की मांग पर, उनकी रिक्वेस्ट पर हम आज एक किसी विशेष स्पेशल कैरेक्टर पर, स्पेशल एक्ट्रेस पर एक दो गाने चलाएंगे। साथ में आपके डेडिकेशंस भी हम लेकर बैठते हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई गाना, कोई बर्थडे विश है, किसी को याद कर रहे हैं या फिर आपकी मनपसंद गाना भी हम चला सकते हैं यहाँ पर, तो बस आप हमें फ़ोन कीजिएगा 4028070 साथ में मैसेजेस के लिए 5250-6200-5250-6200 पर। तो चलते हैं आज एक दो गाने चलाते हैं जो सुनहरे दौर की एक ऐसी अदाकारा के जीवन और यादगार गीतों का सफ़र करते हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, आधुनिक सोच मॉडर्नाइजेशन साथ में बेहतरीन अभिनय से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। हाँ जी, आज की हमारी विशेष अतिथि हैं, हमारी मेहमान हैं, स्पेशल हैं, उनका वेलकम करते हैं सदाबहार अभिनेत्री जीनत अमान को। हम आज कुछ विशेष ही जगह दे रहे हैं यहाँ पर, उनके जो गाने हैं धमाकेदार होते थे, सो बस एक दो जो हमारे लिसनर्स हैं उनके गाने पसंद करते हैं, सो हमने कहा क्यों ना आज उन्हीं पर पिक्चराइज कुछ एक दो गाने हम चलाते हैं। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर कम्स द ब्यूटीफुल खटुबा।

0: सुहाना सफर
1: फिल्म अब्दुल्ला का बेहद खूबसूरत गाना था रफी साहब की मदमस्त आवाज में और संजय खान के साथ नजर आई थी जीना तमान। बेसिक दुगाने हम उन पर चलाने वाले हैं, साथ में आपके भी फरमाइशें जो हैं हम समय समय पर चलाते रहेंगे। वैसे अगर जीनत अमान की बात करें, जीनत अमान का जन्म नवंबर महीने में हुआ था 1951 को, और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और बाद में हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। वैसे इस फिल्म के गाने हमेशा चलते रहते हैं, सो बस आज हमने चूज़ किया है कुछ ऐसे गाने जो कभी कभी चलाते हैं और एक दो गाने जो हैं जो बार बार चलाते हैं, मगर एक ऐसे गाने हैं कि हम जैसे बोली गए हैं तो

तो इन एक दो गानों को हम इस प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। और हरे राम हरे कृष्णा में सफलता पाने के बाद उससे क्या हुआ, उनके अभिनय ने सिन दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल उन्होंने जीत लिया। और इस उनके स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास, आधुनिक व्यक्तित्व ने हिंदी सिनेमा में एक नया दौर शुरू किया। बस जिना तमान आज भी उतनी ही एक्टिव है, सो उनको कहेंगे बस ऐसे ही हमेशा हम उनको याद करते हैं और उनकी पर पिक्चराइज कुछ गाने हम पेश करने वाले हैं। मगर अभी के लिए हम चलते हैं 1952 में, वहाँ पर फिल्म है आन, लता जी की मस्त आवाज़ में, साथ में कोरस, आज मेरे मन में सखी गाए रे। तो बस ये गाना जो है खास तौर पर गौ गोब की श्यामा रघुनंदन जी की मांग पर हमेशा जब आती हैं धमाकेदार एंट्री करके आती हैं, कुछ ऐसे गाने लेकर आती हैं जो हमारे जहन में है मगर हम भूल गए हैं। और ऐसे ही गाने आज हम उनके नाम करने वाले हैं। और वे ये गाना अपने भैया जी जो हैं भैया जयप्रकाश, भाभी हैं नम्रता, केशव युधिश, साथ में उनकी जो सखियां हैं वीना रामफल, विश्वानी डुक्की, नंदिनी ओकलू और सभी जो ऐसे गानों के शौकीन हैं, ये गाना आपके लिए।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जन्म के रंगीन सी ब्यूटीफुल सी सिनेतमान पर पिक्चर आए सिक तो गाने और आपकी फरमाइश आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपने सुना फिल्म पुकार से आवाज आर डी बर्मन साहब की। वैसे 70 और 80 के दशक में सिना तमान ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, चाहे रोमांटिक हो, एक्शन हो या भावात्मक अभिनय। आपको पता ही है सत्यम शिवम सुंदरम और पुकार है, द ग्रेट गैम्बलर, हर हमारे कृष्णा के बाद भी डॉन है और अजनबी है और कितनी सारी फिल्में हैं, कुछ मल्टी स्टार मूवीज़ भी हैं। सो बस हमेशा उनको, और हम कैसे भूलें कुर्बानी मूवी। सो शायद बाद में हम आपको सुनाएंगे कुर्बानी मूवी से लिया गया एक गाना। अभी के लिए बस, ज़बरदस्त फ़ान है आशा जी के, हमारे नवीन भाई मोहताज ब्लॉन्च से, और हमेशा जब आते हैं वे हमेशा आशा जी की आवाज़ में ही गीतों की मांग करते हैं। और आज सोने पे सुहागा जिना तमान पर पिक्चर आज जो हैं गाने जो हैं हमेशा कुछ एक दो गाने हैं, ज़्यादातर गाने आशा जी ने जिना तमान के लिए गाया है। सो बस आपके लिए हो जाए ये गाना नवीन जी, आपके सभी परिवार सभी दोस्तों के लिए और साथ में जिना तमान और आशा जी के फैंस के लिए। फिल्म है पुकार तू मेरे लिए, इस पर हम झूमते हैं, एंजॉय करते हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र प्रोग्राम।

जहाँ सुहाना सफर और भी मजेदार हो रहा है और दिलचस्प हो रहा है आपके कॉल्स के साथ, आपके प्यार के साथ और साथ में जितने गाने हम चला रहे हैं जिना तमान पर पिक्चर आए, साथ में जो आपके पसंदीदा गाने हैं जो जिना तमान से वो आप पसंद नहीं करते हैं मगर दूसरे गाने पसंद कर रहे हैं, तो ये भी हम चला रहे हैं क्योंकि ओबियस ही ये प्रोग्राम जो है आप सबों का ही है, मगर आज खास तौर पर कुछ एक तो गाने जिना तमान पर चला रहे हैं और हम उस ज़माने में खो रहे हैं जहाँ पर ग्लैमरस थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी और उसकी जो पर्सनालिटी थी ना जब या एंट्री करती थी ज़बरदस्त होती थी। तो अब जो गाना हम चलाने वाले हैं जस्ट टू हम ये याद करते हैं कि किसने लॉन्च किया था जिना तमान जी को। जिना तमान जी को लॉन्च किया था हमारे जो यंग ओल्ड मैन थे ना बॉलीवुड के, वे थे देवानंद साहब। उन्होंने लॉन्च किया था जिना तमान जी को और उन्होंने एक साथ काम किया था हरे रामा हरे कृष्णा में मूवी में 1971 में। 1973 में आई हीरा पन्ना, साथ में राखी भी थी, और प्रेम शस्त्र 1974 में, इश्क इश्क इश्क 1974 में ही, इसके बाद 1975 में वारंट, और इसके बाद डार्लिंग डार्लिंग 1977 में, एक्शन कॉमेडी मूवी कलाबाज 1977 में, और एक इंग्लिश लैंग्वेज इंडो फिलिपिनो फिल्म द एविल विद इन 1970 में उन्होंने एक साथ काम किया। और लोगों को जिना तमान साथ में देवानंद साहब की जोड़ी बहुत पसंद आती थी और यहाँ पर मांग आई है देवानंद साहब की एक गाने की मांग आई है किशोरदा की आवाज़ में, और ये है बाबू अनतवा जेव कठबोन, और वे कह रहे हैं कि उनको ये जोड़ी जो है जिना तमान की साथ में देवानंद साहब की उनको बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हम विश करना चाहेंगे बाबूजी के जो बीवी हैं उषा जी, तो उषा जी आपको हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, 2 जुलाई को आपका बर्थडे था। सो पूरे अनत्वा फैमिली की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। और ये गाना जो है बाबू अनत्वा जी की मांग पर, फिल्म है मुनीम जी।

चलिए इसमें नाम जोड़ते हैं. माला जी का रिवे जो रंपर से हैं, बिया ऑफ कोर्स केविन के लिए साथ में हैं, उनके जो पूरे परिवार हैं उनके लिए ये हैं किरण, कनिष, कनील, कबीर, सत्यम, शिव, सभी परिवार के लिए.

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में ओइस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ओइस्टर की पैदावार के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है, जिससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। ड्रग्स के मामले में दो मलगासियों को 24 और 25 साल कैद की सजा दी गई है। अल जीरा मतन मिनिर और जुबैदा उसेनेर को कल सजा सुनाई गई। 6 अगस्त 2019 को इन दो महिलाओं को प्लेजांस के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। वे जोहान्सबर्ग की फ्लाइट से मॉरिशस पहुंची थी। नेहरू अस्पताल में उनके शरीर से 155 कैप्सूल्स बरामद किए गए थे, जिनमें 26 मिलियन रुपए लागत के कुल 1.7 किलो हीरोइन ड्रग्स बरामद थे। रिपाई आर्य समाज के सदस्य कल अपने नए आर्य मंदिर के उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने एक विशेष समारोह में भाग लिया, जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ का आयोजन किया गया। आर्य समाज के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर ये रहा। विदेशी समाचारों में वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कल मोरक्को की टीम की भारी जीत हुई। कनाडा को उसने 3-0 से हराया, जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पैराग्वे की टीम की आशाएं अंतिम समय तक टिकी रहीं और फ्रांस की टीम का उसने डटकर सामना किया, लेकिन अंत में फ्रांस बाजी मार गया स्कोर 1-0। आज रात ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ। रात 9 बजे मैच का सीधा प्रसारण आप एमबीसी पर देख पाएंगे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

हाँ जी, वेलकम बैक टू दिस सेकंड आवर ऑफ सुहाना सफर। दूसरे घंटे में आप सबका हम दिल से स्वागत करते हैं। हो चुका है 1:06। सुहाना सफर प्रोग्राम को जारी रखते हैं यहाँ पर और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर देवीना के संग। आज ब्यूटीफुल संडे है और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी हो रही है, गर्मा गर्म हवा भी, और साथ में आपका साथ है। गर्मा गर्म लंच ले रहे हैं, बना पेची शुभाहार, और जो आराम कर रहे हैं बिस्तर पर, सोफे पर, या फिर ऐसे है घूम घाम कर घर में ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं और रेडियो सुन रहे हैं, सब सभी को ढेर सारा प्यार हमारी ओर से। वैसे कहते हैं ना, पुराने दौर के गीतों में शब्दों की मिठास, धुनों की सादगी और भावनाओं, फीलिंग्स की गहराई आज भी लोगों के दिलों को छू लेती हैं।

और आज विशेषकर स्पेशल है जिनत अमान पर पिक्चराइज एक दो गाने हम चला रहे हैं, साथ में कुछ एक दो गाने जो आपको भी पसंद है। और वैसे उनके अभिनय जो है लोगों को बहुत पसंद आता था और उनकी जो सादगी थी साथ में मॉडर्न भी थी। और अगर देखा जाए तो हमेशा स्कर्ट में, झगड़े में, ड्रेसेस में होती थी, मगर एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने सारी से ही मैं ही वो उन पूरी भूमिका निभाई, वो है सत्य।

हम शिवम सुंदरम। वैसे तो हर रोज़ ये गाना चलती है, मगर आज हम दूसरे गाने को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। और जो गाना हम अब पेश करने वाले हैं, ये तो सभी का फेवरेट है, मेरा भी है, और हमेशा ये गाना जितना सुना जाए उतना कम है। फिल्म है द ग्रेट गैम्बलर। दो लफ्ज़ों की हैं दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। वाह वाजी वाह, तो याद करते हैं बिग बी बच्चन साहब साथ में ब्यूटीफुल जना तमान वहाँ पर अमर मियो। जी हाँ, तो ये गाना जाएगा स्पेशली जो है कटोबोल में है आज गायत्री जी, यहाँ वहाँ पर घूम रही है। सो उनको हमारी ओर से ढेर सारा प्यार है गायत्री जी, और वे अपने बेटे सुधीर के पास हैं, साथ में है बहू सुधा, और बहू सुधा की ही पसंद का गाना है दो लफ्ज़ों की है। तो ये गाना आपके नाम करेंगे, लक्ष्य है जश, हाँ जी मिथिलेश और कमलेश और सभी जो परिवार हैं लंच की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एंजॉय दिस सॉन्ग आप सबों के लिए।

जो इसमें नाम जोड़ते हैं हमेशा की तरह, हमेशा मैसेज भेज देती है हमारी जो ज्योति है चातुर्बेनारस से, गाना आशनी, रेखा, सुरेखा और माधव फैमिली के लिए।

जायती फरमाई शपन्ना की तमन्ना जो है इसमें नजर आए थे देवानंद साहब, साथ में जीना तमान और राखी भी, और इस गीत की मांग की थी लाल माची से संगीता जी ने। और ये था कल जो है मंडे को, मंडे 6 जुलाई को संगीता जी की बेटी जो है शिक्षा मधु का बर्थडे है। तो इन एडवांस शिक्षा हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम मामा संगीता है, पापा सुभाष, आपके हबी हैं प्रवेश मधु, और ऑफकोर्स हैं ज्ञानशा है, नलिनी, और बाकी जोगी जितने जो परिवार हैं आप सभी को, आपके जो बहन हैं, आपके जो पूरे परिवार हैं, सिरतन परिवार सभी लोग, ऐशा हैं, बस सभी का नाम नहीं ले पाएंगे, तो आपको दिल से हैप्पी बर्थडे है। तो ये था आपकी मामा की ओर से पन्ना की तमन्ना है फॉर शिक्षा।

0: से ये किस्सा जुदाई का।
1: फिर मैं आज का पंछी सिंगर हैं रफ़ी साहब और इस गाने की मांग किए हैं नंद जी ऑफ वकवा।

आपकी दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार तो जब होता है न सिर्फ लड़का लड़की के बीच होता है, दोस्तों के बीच भी होता है मेरे दोस्त। सो आपके प्यार के लिए, आपके लव के लिए, आपके अटेंशन के लिए और आपके दुलार के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और बहुतों ने फ़ोन करके कहा है कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है इस प्रोग्राम के साथ और ऐसे गाने सुनकर वाह जी वाह, उनका जो संडे है वो बहुत ही खूबसूरत होना हो रहा है और होगा अगर आप लोग साथ देंगे हमारा आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। ये गाना था स्पेशली माधुरी जी के लिए, खास आपके लिए, दिल लगी नदी हवा थोड़ा सा उठा दुआ। अब हम चलते हैं इस गाने की ओर, हाय हाय ये मजबूरी। और ये गाना जो है रोटी कपड़ा मकान फिल्म का गाना है और इस की मांग की है प्रिंटी पापा, इसे अमृता जी ने अपने पति दानंद के लिए। साथ में नमस्ते जी रंभा फ्रॉम स्विट्जरलैंड, नमस्ते आपको भी। और वे कह रही हैं रंभा जी स्विट्जरलैंड में कुकिंग ब्रेड मालबाओ, ब्रेड मालाओ या नहीं है ब्रेड मालबाओ मैं सोचती हूँ। और साथ में है लॉन्ची वाजी वाह, सेम टाइम लिसनिंग योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, यहाँ पर कूल एंड वी आर एंजॉइंग द समर, वो वाओ अराउंड 28 degrees वाजी वाह यहाँ पर, तो आज भी कुछ अच्छा ही है, इतनी ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। और हाँ जी ये गाना इसमें आपका नाम भी जोड़ देखते हैं, तो बस आप एंजॉय कीजिए अपना लंच रंभा जी और जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं आपके लिए भी ये गाना।

0: RM3 Radio. Radio.
1: सत्यम शिवम सुंदरम लताजी की आवाज में, और ये गाना जो है फिल्माया गया था द वेरी स्वीट ब्यूटीफुल जिना तमान, और इस गाने की मांग की है यहाँ पर जो है रोजिल के साजिद जी, और साथ में इस गाने में नाम जोड़ना चाहेंगे अपना बर्थडे मनाया था फ्राइडे को शुक्रवार को शोभा स्वीपाल और शामुनी, उनके पूरे परिवार की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा जो है बधाइयाँ आप सभी के आपके लिए। विश्व निडुमन जी इसमें नाम जोड़ते हैं आपका, साथ में हैं प्रकाश वेती जी फ्रॉम बेल्जियम, वे कह रही है नया सिलेक्शन, ओल्ड गानों का मजा ले रहे हैं, बस संडे ब्लेसिंग आपको भी।

0: RM3 Radio.
1: जय सत्यम शिवम सुंदरम के बाद अब मनोज जी प्रणाम आपको. नजीमा जी आपकी वाइफ जी हैं, सो उनकी मांग पर फिल्म सात साल का ये गाना आप सबों के लिए और स्पेशली गया सिंह आश्रम के जितने लोग हैं, जितने रेजिडेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, अस्पताल में जितने बीमार लोग हैं, वे मनोज जी, नजीमा जी और हम सब आप सबों के साथ हैं, आपके लिए केयर करते हैं. ये तेरा घर ये मेरा घर. और अंजनी जी सो सॉरी, आपका गाना हमने ढूंढ रहे हैं मगर नहीं हमें नहीं दिखाई दे रहा है. सो कस्टेल से अंजनी जी ये गाना आपके लिए.

0: RM3 Radio.
1: मैं नशे में हूँ फिल्म का गाना है ये। जी हाँ, अलता जी मुकेश साहब की आवाज़ में, स्पेशली गोज टू रेहाना जी और नौकदाम और ख़ास तौर पर माला फाव डॉ और सुरेखा के लिए, साथ में सभी परिवार और उनके फ्रेंड्स के लिए। नजर

0: दो बजे के बाद स्वीट नाइटीज आपके लिए।
1: नजर नजर से हो रही है बात प्यार की, नजर नजर से...

शारदा जी सुंदर फैमिली के लिए आपके आपका नाम जोड़ते हैं इस गाने में, क्योंकि आप जो गाना मांग रही हैं हमने चला दिया है, यादों का मौसम बैठे मेरे पास जे देखता रहूं, ये गाना हो चुका। तो सुंदर परिवार के लिए, सभी आर एम फ्री फैमिली के लिए थैंक यू सो मच।

हाँ जी, हम नहीं भूलेंगे आपसे किया वादा, हमने निभाया, जितने गाने आपने मांगे हमने कोशिश की। एक दो गाने कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर पर नहीं मिलता, मगर हम ढूंढते हैं, अगर नहीं हो पाया तो अफसोस, हम माफ़ी चाहेंगे, मगर जब तक हो सके हम सभी का की मांग पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इस अगले गाने के साथ ही हमारा जो सेकंड आवर है पूरा हो जाएगा सुहाना सफ़र प्रोग्राम का। फिल्म होगा कालिया, आशा जी किशोरदा की आवाज़ में, और आज हमने कुछ एक दो गाने जिना तमान पर पिक्चर आज चलाए, आप सबों को अच्छा लगा, थैंक यू। 2 बजे के बाद सम स्वीट नाइटीज फॉर यू, सभी के लिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं समाचार के बाद।

0: Play. MBC Play. MBC Radio.
1: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत हो रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी। 1 जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है। ये बजट 2026-2027 में ऐलान कदम है, जिसका मकसद है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार दर्ज हैं। मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। इससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। इसका मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम कर पाना। ड्रग्स के मामले में 2 मलागासियों को 24 और 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अजीरा मंतुबेने और जुबेरा उसेनेर को कल सज़ा सुनाई गई। 6 अगस्त 2019 को इन दो महिलाओं को प्लेजेंस के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। वे जोहान्सबर्ग की फ्लाइट से मॉरिशस पहुंची थी। नेहरू अस्पताल में उनके शरीर से 155 कैप्सूल्स बरामद किए गए थे, जिनमें 26 मिलियन रुपए लागत के कुल 1.7 किलो ड्रग्स हेरोइन छिपाए गए थे। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कनाडा को मोरक्को की टीम ने 3-0 से हराया, जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पैराग्वे की टीम की आशाएं अंतिम समय तक टिकी रही और फ्रांस की टीम का उसने डटकर सामना किया, लेकिन अंत में फ्रांस से बाजी मार गया। स्कोर रहा फ्रांस 1 और पैराग्वे 0। आज रात ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ। रात 9 बजे मैच का सीधा प्रसारण होगा एमबीसी पर। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए नमस्कार।
3: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

The romantic voice of Kumar Sanu और Kumar Sanu जी की आवाज़ सुनकर हम back to the 90s sweet memories में हम खो जाएंगे एक साथ 3 बजे तक. Welcome to the Soda Way of Suhana Safar program on RM Free Radio Manoranjan. Divina के संग बस आप लोग साथ दे रहे हैं. दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त. वैसे 90s के दशक का संगीत जो है आज भी दिल को उसी तरह छू जाता है. इन गानों में मासूमियत है, अपनापन है, सच्चे प्यार की मिठास है. अगर इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ हैं, दोस्त के साथ हैं या फिर परिवार के साथ सफ़र कर रहे हैं तो बॉन वायाज, बी सेफ. तो इन गानों का आनंद ज़रूर लीजिएगा एक साथ, गाते गाते, गुनगुनाते गुनगुनाते सफ़र यूं ही खुश हाल हो जाएगा. और अगर अकेले हैं तो यकीन मानिए ये धुनें जो ना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी. और वैसे अब इस गाने की ओर बढ़ते हैं. पंकज उदास साहब जो हैं वे गज़ल सिंगर तहरे मगर बॉलीवुड के कुछ गानों में उन्होंने अपनी जो आवाज़ दी है और लोगों को बहुत अच्छा लगा है. यहाँ पर हैं पंकज उदास साहब साथ में अनुराधा पौडवाल जी. फिल्म है दयावान और इसकी मांग ये है हमेशा रोमांटिक मूड में होते हैं हमारे हरीश बाबू और बुबा से अपनी किस जो खास हैं अनु उनके लिए और सभी लिसनर्स के लिए.

0: RM3 Radio. Radio.
1: जी हाँ, 2:24 हुए हैं आज संडे 5th of July 2026। कहने को दिल है हमारा, हमारे सीने में धड़कता है, मगर प्यार में ना ये तड़पता है किसी और के लिए। दिल हमारा है मगर तड़पता है किसी और के लिए, ये क्या करें, यही तो नेचर है मेरे दोस्त। और दो दिल अगर पाएंगे तो तकलीफ कम होगी ये पता नहीं, मगर अगर किसी से प्यार किया है तो दुख तो होगा ही, दर्द तो होगा ही, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम ही सिर्फ खुशियाँ नहीं, दर्द भी होता है। वैसे मोहब्बत की खुशबू हवाओं में धुल जाए, हर धड़कन किसी अपने का नाम गुनगुनाए। 90s के इन गानों का जादू कुछ ऐसा है, हर सुनने वाला मुस्कुराए, हर दिल प्यार में डूब जाए। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि 2 बजे के बाद ओनली एंड ओनली 90s वाले गाने, और उसके ऊपर मगर जो 80s वाले गाने हैं हम चलाते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच। अभी के लिए 90s और 2000s के गाने। तो अब अगला गाना जो है फिल्म है राजा जी। तो नमस्ते जी, मैसेज पढ़ते हैं, एंड हैप्पी संडे देविना जी, ऑफ कोर्स आपको भी, जस्ट ट्यून और एम फ्री लिसनिंग योर ब्यूटीफुल वॉइस एंड योर अमेजिंग शो, थैंक यू सो मच। सो ये जो है राजा जी मूवी का गाना है, तो फ्रॉम ज्ञान बिहारी जी, वाइफ है सबिता, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव, सुनील, रानी, शीतल और सभी आर एम फ्री लिसनर्स के लिए ये गाना है उदित नारायण साहब की आवाज़ में। सो ओनली 90s, अगर आपको कुछ गाना सुनना है 90s वाले तो हमें ज़रूर मैसेज भेज सकते हैं 5250-6200 पर, 5250-6200 पर।

1990s में 15th अगस्त और इस फिल्म के सभी गाने काफी मशहूर हुए थे। अभी के लिए कुमार सानू साहब साथ में अलका याग्निक, तुम ही हो महबूब मेरे। आप सभी लिसनर्स के लिए एंजॉय दिस संडे आफ्टरनून आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर प्रोग्राम देवीना के संग साथ में गुनगुनाते हैं शेयर लव गिव लव एंड बी हैप्पी।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो

Beautiful song, beautiful voice of Akka Yagnik, Udit Narayan Sahab, film hai Muskaan. ये गाना शादाद जी आपके लिए, सभी सुंदर परिवार के लिए, हमारे और एम फ्री फैमिली के लिए, थैंक यू सभी लिसनर्स के लिए.

जिसमें नाम जोड़ते हैं हमसे जुड़े हुए हैं त्रियोली से सूरज शर्मा सजदा जी, नाइटीज़ वाले गाने हम चला रहे हैं तो इसमें आपका नाम जोड़ देते हैं। वे कह रहे हैं लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल शो, थैंक यू, और सभी रेडियो मनोरंजन टीम के लिए थैंक यू, सभी ऑडियंस के लिए, आपके परिवार के लिए भी, आपके लिए भी सूरज जी, एन्जॉय दिस शो एंड एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू।

जय श्री जी है सूर्य नाम से अपनी माता जी के साथ रेडियो सुन रही है प्रणाम माता जी एंजॉय दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा शाहरुख खान रानी मुखर्जी प्रीति जिंटा

ज्यादा को संभालिएगा क्योंकि अब वीकेंड का समय समाप्त होने वाला है और कल से वीकडे शुरू और भागा दौड़ी शुरू। आप सभी को बॉन कुराज कहेंगे, ढेर सारा प्यार जो भी कीजिएगा दिल से कीजिएगा, और जो आपके एम्बिशन है, आपका जो आपकी जो नौकरी है, आप जो भी करते हैं ज़िंदगी में आप सफल हो। बस कहेंगे जो अगर कोई ऐसा गीत आपने सुना जो आपके दिल के बहुत करीब था, पहली मुलाकात की याद आई, पहली मुस्कान या किसी प्यारी याद से जुड़ी हुई कोई गाना आपने सुना और आप खुश हुए, तो बस हम खुश हुए कि आप लोग खुश हैं। तो अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगला गाना जो है अंतिम गाना होगा आज के लिए। देखते ही देखते हमारा जो आज का रोमांटिक सफ़र है अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका। उम्मीद है कि 90s के दशक के इन मधुर गानों ने आपकी संडे को की दोपहर को और भी खूबसूरत बना दिया होगा। मुस्कुराते रहिए, अपनों से प्यार बांटते रहिए और संगीत को, म्यूज़िक को हमेशा अपने दिल के करीब रखिए और हमेशा जुड़े रहिए रेडियो जो है MBC रेडियो से, रेडियो मनोरंजन के साथ। सो बस दीविना की ओर से ढेर सारा प्यार है सुहाना सफ़र प्रोग्राम को और रोमांटिक बनाने के लिए एक और गाना है और नई यादों के साथ, नए किस्सों के साथ, सदाबहार गीतों के साथ हमारे और आपकी मुलाकात फिर से होगी अगले सप्ताह। हमारे बाद आएंगे जयप्रताप सिंह, ऐसा भी होता है प्रोग्राम लेकर। सो ये जो गाना है, अगला गाना जो है फिल्म है कहो ना प्यार है का टाइटल सॉन्ग। भाई महेंद्र जी का प्रणाम, आपको भी प्रणाम है। सो आप ये सेगमेंट बहुत मज़ा आ रहा था आपको, आपने सुना। सो सुनियमा नाइस, थैंक यू सो मच। सो कहो ना प्यार है इस टाइटल सॉन्ग के साथ ही हम आपसे विदा चाहेंगे। बाय महेंद्र जी, आपके लिए और सभी लिसनर्स के लिए ये गाना। बाय बाय।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत हो रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी। पहली जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है। ये बजट 2026-2027 में शामिल कदम है, जिसका मकसद है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार दर्ज हैं। मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है, जिससे ब्लू इकोनॉमी की निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर 2026 पहली जुलाई को पारित हुआ। ये 2012 के कानून की जगह ले रहा है। इस विधेयक के तहत नए नियम जोड़े गए हैं ताकि उन लोगों को नौकरी मिलने और समाज में दोबारा बसने और पहचान बनाने का मौका मिले जिन्होंने किसी अपराध के लिए सजा काट ली है। जहां एक और कुछ ऐसे अपराध हैं जो आजीवन मोरालिटी सर्टिफिकेट में बने रहते हैं, वहीं कुछ छोटे मोटे अपराध हैं जो हटा दिए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कल मोरक्को की टीम की भारी जीत हुई। कनाडा को उसने 3-0 से हराया। फ्रांस और पैराग्वे के बीच स्कोर रहा 1-0, फ्रांस 1 और पैराग्वे 0। और आज ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ रात 9 बजे। मैच का सीधा प्रसारण होगा MBC पर। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। ब्रांच रोड मॉडल ऑस्ट्रेलिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के जनाब अख्तर हुसैन सुभाची, जो हरश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान ब्रांच रोड मॉडल ऑस्ट्रेलिया से उठाकर दफनाने के लिए अमोरिका कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Plug and play.
3: RM2.
2: Plug and play.

0: ऐसा भी होता है ऑन RM3।
1: कितने कठोर है ये दुनिया वाली और कितने जालिम है ये दुनिया, यहां पर क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। कहां पर जीवन है, कहां पर मृत्यु है, कौन किसके खून का प्यासा है, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, आने वाले पल में क्या होगा, कौन जान सकता है।

बड़ा ही बेदर्द है ये जमाना। यहां पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिससे प्रेम करते हैं वही हमें जख्म देता है, और जिसे हम नफरत करते हैं कभी वही अपना बन जाता है। अजीब है यहां के लोग, अजीब है ये पूरी दुनिया भी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर और 94.95.693.2 MHz स्वीकार कीजिए और जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम। शाम के 3:05 और अभी से लेकर शाम के 4 तक अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल सफर को एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। यस, एंड दैट विल बी फ्रॉम द मूवी राज। जो भी कस्में खाई थी हमने, चलिए एक साथ सुनते हैं गाना।

जी हाँ, आजकल बहुत सारे देशों में गर्मी की लहर चल रही है, हीट वेव। यूरोप में हाल के वर्षों में हीट वेव, अत्यधिक गर्मी की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही है। इस साल यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का सामना किया जा रहा है। इसके मुख्य प्रभाव इस प्रकार से है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के कारण बहुत से लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, बहुत से लोगों की जान भी जा रही है इस गर्मी से। बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को सबसे अधिक कष्ट हो रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गर्मी के कारण मृत्यु दर से वृद्धि हो सकती है और इस गर्मी के कारण वहाँ के जंगलों में आग लग रही है। अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है, विशेष रूप से स्पेन, पोर्टुगल, ग्रीस और फ्रांस में बड़े पैमाने में ये सब देखा जा रहा है। और बेशक कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, फसलें सूख जाती है और उत्पादन कम हो सकता है। गेहूं, मक्का, अंगूर तथा अन्य फलों की पैदावार प्रभावित हो रही है, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नदियों और जलाशयों का जो जल स्तर है वो घटता जा रहा है। यूरोप में कई क्षेत्रों में पीने के पानी भी नहीं है, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध ही नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये हीट वेव चलता रहा तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है। और परिवहन पर प्रभाव, रेल की पटरियां अत्यधिक गर्मी के कारण फैल सकती है जिससे ट्रेनों की गति कम हो सकती है, सड़कों की सतह नरम हो सकती है, कुछ उड़ानों में भी देरी हो सकती है। और सूखे की स्थिति गंभीर हो जा रही है और बेशक जो बस होते हैं, जो गाड़ी होते हैं, उनके पहिए जो है गर्मी के कारण गल रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहा है। सो इस प्रकार की गर्मी पहली बार देखी जा रही है, खासकर यूरोप में। लोग कहते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं मिला है कि टेम्परेचर 40 से 45, 50 डिग्री तक पहुँच रहे हैं। सो दैट्स रियली रिस्की एंड डेंजरस। सो जैसे हम बता रहे हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, बहुत सारे यूरोपीय देशों में आजकल गर्मी की जो लहर है वो प्रभाव कर रही है, वहाँ पर प्रहार कर रही है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। सो क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ऐसे प्राकृतिक आपदा कहीं पर ना आए। पर दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने बता दिया है और जो मौसम विशेषज्ञ है दुनिया के, उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में, जैसे अभी हम जुलाई के महीने में हैं, तो हम भी, मॉरिशस वासी भी, हम इस एल नीनो में प्रवेश करेंगे इस जुलाई के महीने से।

और इसका प्रभाव हम पर भी हो सकता है एंड दैट विल बी टिल नेक्स्ट ईयर टिल द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. सो मैं सावधान रहना और देखेंगे कि जो एलनीनो का प्रभाव होता है वो कैसा होगा हिंद महासागर के टापुओं के लिए. पर जब हम ये सब टीवी पर देखते हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डर लगता है कि कैसे गर्मी के कारण जो गाड़ियां हैं जो व्हीकल्स हैं जो रास्ते पर चलते हैं उनकी जो पहिए होते हैं गर्म से गल जाते हैं उनमें आग लग जाती है और जंगलों में भी आग लग रही है घरों में भी आग लग रही है इतनी गर्मी हो रही है. सो ये सब हमें बताता है कि शायद दुनिया का अंत दूर नहीं है और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब कलयुग का अंत आएगा तो ऐसा ही होगा. दुनिया में ऐसा हो रहा है दोस्तों ऐसा भी होता है.

सो हम ये कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हैं, यूरोप में गर्मी है तो यहाँ पर सर्दी है, एंड इस सर्दी को मैनेज कर पा रही है, ऑलराइट। बहुत कंप्लेन तो नहीं कर सकते। और दोस्तों हम बात करेंगे कि जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है, पर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नेचुरल होते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, ऑलराइट। सो आयुर्वेद दवाइयों, प्राकृतिक जड़ी बूटियों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से बनी जाती है। आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और जीवन शैली का संतुलन बनाए रखना भी है। और बेशक अश्वगंधा, त्रिफल, च्यवनप्राश, गिलोय, ब्राह्मी, शातावरी, नीम, टर्मरिक, ये सब आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं। अश्वगंधा यानी कि शक्ति बढ़ाने, तनाव कम करने और अच्छी नींद में सहायक मानी जाती है। त्रिफला यानी कि पाचन सुधारने और कब्ज के राहत से हमें कब्ज से राहत मिलाती है। च्यवनप्राश रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और गिलोय प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने और बुखार

त्यौहार के दौरान पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और मानसिक एकाग्रता के लिए शतावरी विशेष रूप से महिलाएं में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है। नीम का पत्ता त्वचा को साफ करता है। टर्मरिक यानी कि हल्दी सूजन कम करने और घाव भरने में सहायक देता है। और आयुर्वेदिक दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो 100% अच्छा होता है। और आयुर्वेदिक दवा भी चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप होता है। गर्भावस्था स्तनपान या गंभीर बीमारी की स्थिति में स्वयं दवा न लें। यदि आप चाहते हैं तो एक डॉक्टर से सलाह लें। अगर डॉक्टर कहे कि आप आयुर्वेद का प्रयोग कर सकते हैं तो कर सकती है। और बेशक यह जो आयुर्वेद की दवाएं हैं, हम कई सालों से सदियों से लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं और कहते हैं कि केमिकल दवाइयों के जो वो भी तो अच्छे हैं, पर जो लोग केमिकल दवाइयां उतना नहीं ले सकते तो आयुर्वेद की दवाइयां ले सकते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी का पेस्ट बनाकर हम अपने शरीर में लगाते हैं साफ़ सुथरा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। फिर हल्दी का जो पेस्ट होता है आप उसे दूध में डालकर, गर्म दूध में डालकर पीते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम दूर होता है। और ये जो जहजाम जिसे हम कहते हैं, जी हाँ अदरक, इसको हम चीनी से खाएंगे तो ये हमें खांसी से राहत दिलाती है। सो बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो पतंजलि योग द्वारा किया गया है, जिसे रामदेव बाबा टीवी पर आते हैं बताते हैं हमें कि बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो केमिकल में नहीं होता है, बस आयुर्वेद में नेचुरल दवाइयां होती है जिससे इंसान ठीक हो सकता है। और कहता है कि अगर इंसान का स्वास्थ्य ठीक है तो वो कुछ भी कर सकता है और बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए हमेशा आयुर्वेदिक दवाइयाँ का इस्तेमाल ज़रूर करें। कौन जाने आप भी ठीक हो जाएं। और आजकल बहुत से लोगों को सर्दी खांसी और जुकाम हुआ है, तो हम आपको बता दें कि अगर हल्दी को आप लेंगे, उसे अच्छी तरह से छील कर पीस कर एक पेस्ट बनाएं, फिर थोड़ा सा गर्म दूध करें, दूध को गर्म करें और उस पेस्ट को डालें, उसे मिक्स करें और उसे एक ग्लास हल्दी दूध पिए रात के समय, तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन में सर्दी खांसी जुकाम सब दूर हो जाएगा।

लेडीज एंड जेंटलमैन डियर ऑडियंस गाइस एंड गर्ल्स मैं आप सुन रहे ऑन फ्री रेडियो मंडरन से लाइव प्रोग्राम ऐसा भी होता है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम है ये और कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है आत्मा बहुत खुश होती है पर जैसे शरीर बिगड़ने लगता है आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है सो बहुत मतलबी होती है ये आत्मा इसीलिए कहते हैं कि शरीर को आपको अच्छा रखना है इसको सुंदर बनाना है यह जो शरीर है एक मंदिर की तरह है तो बेशक अपने शरीर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें जब तक आपका शरीर अच्छा है और तब तक आत्मा अंदर है जैसे ही आपका शरीर में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है आत्मा क्या करती है वो मौका ढूंढती है कब शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाए और भगवद्गीता में कहा गया है श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहनता है वैसे ही आत्मा भी एक बूढ़े शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है अब समझ में आया और लोग कहते हैं अरे भाई उसका समय आया वो मर गया ऐसी बात नहीं है जब तक आत्मा शरीर के अंदर है उसे अच्छा लगता है कि शरीर स्वस्थ है तंदुरुस्त है तो वो उसमें इसी हम कहते हैं कि रोज़ कसरत करें एक्सरसाइज करें योग साधना करें अपना शरीर अपने शरीर को जो है अच्छी तरह से उसका ध्यान रखें और बीमार है तो डॉक्टर के यहाँ जाए ठीक हो जाए दवाइयाँ लें वरना अगर आप बीमार हैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहे अगर शरीर बीमार रहता है कई बार ये बीमार चलता रहता है तो आत्मा क्या करती है देखती है कि अरे ये व्यक्ति तो अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहा है तो आत्मा क्या करती है आत्मा शरीर को जैसे छोड़ती है तो लोग कहते हैं

भाई फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसलिए दोस्तों जरा बच के रहिएगा, ये आत्मा बड़ी ही चंचल है, बहुत ही मतलबी है, बहुत ही सेल्फिश है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है आत्मा उसके अंदर है, शरीर बीमार हुआ तो गए काम से।

ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में बहुत से धनवान लोग हैं, अरबपति, करोड़पति, लखपति है। और अब हम बात करेंगे फ्रांस के धनी लोगों के बारे में। जी हाँ, और फ्रांस में सबसे धनी लोगों में मुख्य रूप से लग्जरी सामान, सौंदर्य प्रसाधन, शिपिंग और निवेश क्षेत्र के उद्योगपति शामिल है। बेनो ऑनो ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है। LVMH के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिसके अंतर्गत लुई विटों, जियो, टिफानी और को जैसे प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड आते हैं। दूसरी जगह पे है फ्रांसवाज बेटनकोट मेयर्स, लोरियल की उत्तराधिकारी है और विश्व की सबसे धनी महिलाओं में से एक है। इनका नाम है फ्रांसवाज बेटनकोट मेयर्स। तीसरे स्थान पे है आले वर्थेमर, चैनल के सह मालिक, जो चैनल परफ्यूम हम यूज़ करते हैं उनके मालिक हैं। फिर चौथे स्थान पे है जेरार वर्थेमर, अपने भाई के साथ चैनल के सह मालिक है। फिर पांचवें स्थान पे है रोडल्फ सादे, CMA GGM, विश्व की प्रमुख शिपिंग कंपनियों में से एक है। और एमान्युअल बेसनियर नंबर छः पे है, वो लैक्टालिस के प्रमुख, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में से है। और जावियर नील सातवें स्थान पे, जो दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगी तथा निदेशक है। सो अब आपको पता चल गया कि इस दुनिया में फ्रांस के जो जितने अमीर लोग हैं उनके नाम कौन से हैं। बेनो ऑनो, फ्रांसवाज बेटनकोट मेयर्स, आले वर्थेमर, जेरार वर्थेमर, रोडल्फ सादे और एमान्युअल बेसनियर, विदाउट फॉरगेटिंग जावियर नील। तो एक दिन अगर आपको मौका मिले फ्रांस में जाने के लिए, तो वहाँ पर आप गए, इन लोगों से दोस्ती हुई, तो कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। भैया, महंगाई का ज़माना है। कौन जाने, आप यूट्यूब, आप फेसबुक पर इनसे दोस्ती कर ले और आपको वो लोग कुछ उपहार दे दें। सो धनी लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, स्पेशली इन फ्रांस। इसे हमने आपको बताया कि फ्रांस में धनी लोगों के नाम कौन कौन से हैं। सो वंस अगेन, let me remind the richest people in France are as follows: Bernard Arnault, Françoise Bettencourt Meyers, Alain Wittemer, Gérard Wittemer, Rodolphe Sadi and Emmanuel Bessin, without forgetting Xavier Niel. और अभी के लिए वहाँ तो धनवान लोगों की कमी नहीं है और यहाँ पर गीतों की कमी नहीं है। मेरे जोहर जबे तुझे मालूम नहीं। और जो लोग खूबसूरत भी होते हैं वो भी धनवान होते हैं कि नहीं? हाँ, जो लोग सुंदर होते हैं, अच्छे दिखते हैं, सभी लोग उनके पीछे जाते हैं, क्योंकि सुंदर लोग भी बड़े ही धनी होते हैं। सौंदर्य के धनी होते हैं, क्या बात है।

अभी कुछ देर पहले हम धनी लोगों के बारे में बात करें, जब हम बात करेंगे हमारे जो समुद्र तट है, दुनिया के जो सबसे समुद्र दुनिया के जो सबसे सुंदर समुद्र तट है उनके नाम। यस, दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्री तट अपने साफ नीले पानी, रंग बिरंगी प्रवाल भृतियाँ, कोरल रीफ, सफ़ेद रेत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से है मालदीव्स आइलैंड। यस, बेस्ट प्लेस फॉर हनीमून। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे, फिल्मी सितारे जब शादी करते हैं तो वहाँ पर हनीमून करने जाते हैं, मॉरिशन लोग भी जाते हैं। सो मालदीव इज़ सो ब्यूटीफुल, उसका जो समुद्र तट है, यस, उसका जो पानी है सफ़ेद रेत है, शानदार प्रवाल भितियाँ के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा है बोरा बोरा, यानी कि शांत लगून, क्रिस्टल जैसा साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर वाटर और लग्जरी रिजॉर्ट के लिए जाना जाता है। तीसरे स्थान पे है पलावन, नीले समुद्र, चूना पत्थर की चट्टानों और समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रभाव भीति जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ और समुद्री जीव पाए जाते हैं। पांचवें स्थान पे है सेशेल, पारदर्शी समुद्र, विशाल

ग्रेनाइट चट्टानों और सुंदर समुद्र तटों से घिरा और छठे स्थान पे नावागियो बीच, ये गहरे नीले समुद्र और जहाज के मलबे वाले प्रसिद्ध समुद्र तट के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। और मॉरिशस, फिजी, बहामास भी सुंदर समुद्र तट है यहाँ पर। सो ऑलवेज रिमेंबर द ब्यूटिफुल प्लेस, द ब्यूटिफुल सीसाइड बीचेस इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन मालदीव्स, बोरा बोरा, पलावन, ग्रेट बैरियर रीफ, सेशेल, नावागियो बीच, मॉरिशस एंड फिजी। सो यहाँ के जो समुद्र तट है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। और अगर आपको मौका मिले तो मालदीव्स आपको जाना चाहिए। आई एम प्लानिंग टू गो टू मालदीव्स। अभी स्कूल के हॉलीडेज मिलने वाले हैं इन जुलाई अगस्त, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू मालदीव्स में अपने पत्नी और बच्चों के साथ। आई एम गोइंग टू, मैं वहाँ का भ्रमण करूँगा मालदीव्स का, क्योंकि मैं अक्सर टीवी पर, यूट्यूब पर देखा है। आई लव द लैंडस्केप, आई लव द सी, द वाटर, सो ब्यूटिफुल। शो आई एम गोइंग टू मालदीव्स दिस ईयर, अगर भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और वहाँ का जो समुद्र है, वहाँ का जो कहते हैं कि मालदीव्स में होटल जो है समुद्र के नीचे होते हैं, और समुद्र के नीचे आप भोजन करें और आप मछलियाँ तैर रही हैं चारों ओर, क्या बात है। सो इफ़ यू गेट द चांस, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू विजिट मालदीव्स वन डे।

शाम के 4:50 हो रहे हैं, ऐसा भी होता है कार्यक्रम और फ्री रेडियो मनोरंजन पर लाइव फ्रॉम एमबीसी मोका। अब हम बात करेंगे द टेक्नोलॉजी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का देश कौन सा है, वो है जापान। जी हाँ, जापान आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में से है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, परिवहन और सभी क्षेत्र में जापान नंबर 1 पे है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी, जापान नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत अधिक विशेष ध्यान देता है। यहाँ की कंपनियाँ लगातार नए आविष्कार करती है और रोबोटिक्स में अग्रणी जापान को रोबोटिक्स का वैश्विक नेता माना जाता है। उद्योगों में लाखों और रोबोट काम करते हैं। अस्पतालों और वृद्ध लोगों की देखभाल के ये भी विशेष रोबोट बनाए गए हैं, क्या बात है। और घरों और होटलों में सेवा देने वाले रोबोट भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। घर में भी रोबोट है, क्या बात है। रोबोट घर में खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, वाओ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उद्योग स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, परिवहन और से जुड़ा है। और स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट शहर और सब कुछ स्मार्ट है जापान में। यस, एंड शिनकंसन दुनिया के सबसे तेज़ और समय की पाबंद रेल पटरियों में से एक है जो जापान में पाया जाता है। उसकी गति लगभग 320 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और सुरक्षा और समय पालन के लिए यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जापान की कई प्रसिद्ध कंपनियां विश्व भर में मानी जाती है, जैसे सोनी, पानासोनिक, कैनन, निंटेंडो। ये कंपनियां टीवी, कैमरा, गेमिंग और अन्य आधुनिक उत्पाद करती है। फिर ऑटोमोबाइल उद्योग, टोयोटा, होंडा, निसान और सुजुकी जैसे कंपनियां विश्व की अग्रणी वाहन निर्माता है। जापान जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा आगे था, हमेशा आगे है और हमेशा आगे रहेगा। और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है वो भी बहुत नंबर 1 पे है। और आधुनिक चिकित्सा उपकरण, रोबोटिक सर्जरी और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जापान के में औसत जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे अधिक देशों में गिनी जाती है। यस, सबसे लंबी आयु लोगों की होती है जापान में, बिकॉज दे हैव ए वेरी गुड हेल्थ, जो स्वास्थ्य प्रणाली है वहाँ बहुत अच्छा है। और जापान की शिक्षा प्रणाली विज्ञान, गणित और तकनीकी कौशल पर विशेष जोर देती है। विश्वविद्यालय और शोध स्थान नई टेक्निकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो जापान इज़ ऑन द टॉप, यस, टॉप ऑफ द टॉप। और AI और टेक्नोलॉजी दुनिया में जापान हमेशा नंबर 1 था, हमेशा नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 रहेगा। ये दावा है जो रिसर्च करते हैं लोग कि जापान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए।

Ladies and gentlemen, guys and girls, disco dancer के इसी गीत के साथ ही ऐसा भी होता है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है. याद रहे 4 बजे होगा फ्लैश न्यूज़, के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी गजलें. हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी. हमें सुनने के लिए, हमें SMS करने के लिए और हमें TikTok पेज पर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सो ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो मनोरंजन एंड TikTok पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन. हमारी आपकी मुलाकात होगी मंगलवार की रात को 9 बजे से 11 बजे तक इन भोजपुरी टेरका. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी अजय प्रताप सिंह. से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस. नमस्ते. बाय बाय.

0: चार बज रहे हैं। सुनते समाचार यात्रा जी के साथ नमस्कार।
1: सभी को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट 2026 पहली जुलाई को पारित हुआ। ये 2012 के कानून की जगह ले रहा है। इस विधेयक के तहत नए नियम जोड़े गए हैं ताकि उन लोगों को नौकरी मिलने और समाज में दोबारा अपनी पहचान बनाने का मौका मिले जिन्होंने किसी अपराध के लिए सजा काट ली है। जहां एक और कुछ ऐसे अपराध हैं जो आजीवन मोरालिटी सर्टिफिकेट में बने रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे अपराध हैं जो हटा दिए जाएंगे। 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने जा रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी। पहली जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है। ये बजट 2026-2027 में शामिल कदम है जिसका मकसद है जरूरतमंद परिवारों की मदद करना। वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार पंजीकृत हैं। मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है जिससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कनाडा और मोरक्को के बीच टक्कर हुई और स्कोर रहा कनाडा 3 और मोरक्को 0, जबकि आज कनाडा को उसने 3-0 से हराया। जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पैराग्वे की टीम की आशाएं अंतिम समय तक टिकी रही और फ्रांस की टीम का उसने डटकर सामना किया, लेकिन अंत में फ्रांस बाजी मार गया स्कोर 1-0। आज रात ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ। रात 9 बजे मैच का सीधा प्रसारण होगा MBC पर। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। ब्रांच रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्डर के जनाब अख्तर हुसैन सुभाची जो हराश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान ब्रांच रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया से उठाकर दफनाने के लिए अमोगिका कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 4:11 हो चुके हैं दोस्तों, आदाब नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सुन रहे हैं RM3 और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों रविवार की ये शाम थोड़ी इश्क की, थोड़ी दर्द की, थोड़ी यादों की और थोड़ी सी उम्मीदों की। आज की महफिल उन शायरों के नाम जिन्होंने अपना दिल कलम पर रख लिया। सबकी अपनी कहानी, सबका अपना दर्द, सबका अपना इश्क। तो आइए ये प्रोग्राम उन शायरों के नाम और आप सबके लिए फिल्मी गजलें।
1: RM3 Radio.

0: 4:18 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। एक ऐसी शायरा हुई, उनका नाम है तनवीर अंजुम। लिखती हैं, वो जो खत लिखा था मैंने भेजा नहीं, वो जो खत लिखा था मैंने भेजा नहीं, वो जो दर्द था दिल से कहा नहीं, मोहब्बत में इतना भी होता है जो सबसे ज़रूरी हो वो कभी कहा नहीं। दोस्तों, कितने खत हैं दिल में जो कभी भेजे नहीं गए, कितनी बातें हैं जो कही नहीं गई पर रह जाती हैं कहीं ना कहीं दिल में। आज उसे एक बात को ज़रूर कह दीजिए जिसको कई सालों से आपने अपने दिल में रखी है। शायद हो सकता है आपके सामने कोई ना हो, पर कहीं ना कहीं आप अपने सामने खुद को ही वो बात कह देंगे तो कहता है ये यूनिवर्स सुनता है और उस तक वो बात ज़रूर पहुँचेगी।
1: RM3 Radio.

0: 4:25 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ, जहां हम बात करते हैं शायरों की, शायरा की और बहुत प्यारी सी शायरियों की। एक हमारे बीच में हुई है एक शायरा जिनका नाम है इफ़फ़ात सरोज। लिखती हैं, उन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ लिखा और लिखने के लिए उन्होंने जो लिखा बहुत ही खूबसूरत लिखा। कहती हैं, उसने पूछा क्या चाहती हो, मैंने कहा बस तुम। उसने कहा ये तो बहुत आसान है, मैंने सोचा काश ये सच होता। दोस्तों, मोहब्बत में जो चाहिए, जब वो इंसान, वही इंसान सबसे मुश्किल होता है, उस मुश्किल घड़ी में जब आपको उसकी ज़रूरत होती है और वो इंसान आपके साथ नहीं खड़ा होता, तब आपको एहसास होता है कि काश ये सच होता, काश जो मैंने सोचा था वो सच होता। इस मुश्किल घड़ी में मुझे इसकी ज़रूरत है और मेरे साथ वो है नहीं, यही होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार में एहसास होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ यादें होती हैं और तभी बन के रहती हैं जब तक आपको उस एहसास, उस प्यार का एहसास होता है। मिताली भी ऐसे ही लिखती हैं, मुझे माफ़ कर मेरे हमसफ़र। इस खूबसूरत पेशकशों में सबसे अच्छी खूबसूरत बात जॉनी लिया साहब ने भी लिखी। कहते हैं, बहुत सारी बातें मेरे दिल में चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें मेरे दिल में चलती रहती हैं, पर ना जाने कहाँ वो चीज़ टूट जाती है। और सच बात है, जब जिंदगी में सारी आशाएं टूट जाती हैं तब शायर याद आता है या शायरा।
1: RM3 Radio.

0: गजल।
1: 4:42 हो चुके हैं दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ पूनम। एक ऐसे शायर दोस्तों जिस शायर ने बहुत कुछ लिखा, और जब जब उनकी बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि गुनगुनाना तो पड़ेगा ही। कतील शिफाई। उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बेहतरीन नगमे लिखे, दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर, ये गाना याद है आप सभी को। ये गाना कतील साहब का लिखा हुआ है। उन्होंने इश्क को इतनी सादगी से कहा कि हर दिल उनकी शायरी को खुद को ही पहचान लेता था। वो लिखते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुम्हें इस दिल में ए मोहब्बत हम पहचान लेते हैं। सच्ची तो बात है दोस्तों, जब कोई सच में दिल से मोहब्बत करता है और वो इंसान उस इंसान के दिल में बस जाता है तो उसकी आहट से भी पहचान हो जाती है। आंखें बंद कर लो या आंखें निकाल के हाथ में रख दो, सच बात है उस इंसान को एहसास हो जाता है कि ये जो इंसान चला आ रहा है ये वही इंसान है जिससे मुझे मोहब्बत है। वो कितना भी करीब आ जाए, आपकी दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं, और जब दिल की धड़कनें बदलती चलती जाती हैं तो एहसास होता है कि इस इंसान से तो मोहब्बत है, बट इसके एहसास से, इसके चलने से, इसकी बात करने से भी मोहब्बत है।
0: RL Free Radio.

0: नजर।
1: 4:48 हो चुके हैं दोस्तों, इस समय आप जुड़े हुए हैं फिल्मी गजलों के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों वक्त हो चला है आज दिल से कुछ महसूस किया होगा आपने, कुछ पुरानी यादें जागी होंगी, कुछ अनकही बातें याद आई होंगी, कुछ ऐसे चेहरे आंखों के सामने आए होंगे जिनको आप भुलाना चाहते हो बहुत समय से पर भुला नहीं पाते। बस यही करती है गजल, बिना कुछ कहे सब कह देती है। अगले रविवार फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं ऐसा भी होता है जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे बाद आएंगी शीतल जी, उनके भी प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको कहूँगी RM3 पर आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े रहिए, अपने ही प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपके दिल को सुकून देते हैं। तो इन्जॉय कीजिए जगजीत सिंह की ये आखिरी गज़ल कोई फरियाद।
0: RM3 Radio.

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
1: 94.6 98.2 megahertz you're listening RM Free Radio
2: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें
3: A cinematic genius, a dreamer inspired by the great Charlie Chaplin, a passionate

1950-70 का दौर रहा राज कपूर का दौर। 1955 में श्री 420 इस फिल्म में सामाजिक के हर मुद्दे को उन्होंने बड़ी खूबसूरती और कॉमेडी के जरिए पेश किया। एक गाना आया था इचक दाना बीचक दाना, इस गाने को मुकेश साहब और लता जी ने पेश किया। पिक्चराइज हुआ ये गाना नरगिस और राज कपूर पर। शंकर जी किशन के संगीत निर्देशन में इस गाने को लिखा हसरत जयपुरी ने।

0: हम
1: जिंदगी के फलसफे को पेश करना कोई राज कपूर से सीखे, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधे से बात है। हालांकि राज कपूर के लगभग सभी गाने प्लेबैक मुकेश साहब देते थे, लेकिन इस गाने को बड़ी खासियत और खूबसूरती से पेश किया मन्ना डे ने।

1966-1966 में फिल्म आई थी तीसरी कसम। राज कपूर इस फिल्म में वहीदा रहमान के ऑपोजिट नजर आए और इस फिल्म में खास बात ये रही, पॉपुलैरिटी इतनी खास रही कि नेशनल फिल्म अवार्ड से इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का भी अवार्ड प्राप्त हुआ। कितनी खूबसूरती से राज कपूर अपनी फिल्मों में दर्शाते थे।

नरगिस के अलावा राज कपूर ने अपने दौर के लगभग सभी महान कलाकारों के साथ काम किया। उन महान कलाकारों के बीच नूतन भी शामिल थी। नूतन और राज कपूर की जोड़ी ने अनगिनत गाने, अनगिनत मूवीज पेश किए। फिल्म दिल ही तो है, लागा चुनरी में दाग, मन्ना डे ने प्लेबैक दिया, संगीतकार रहे रोशन साहब और गाने को लिखा साहिर लुधियानवी ने। फिल्म आई थी 19

नूतन और राज कपूर के इस रियल जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत खूबसूरत सदाबहार फिल्मों के साथ साथ सदाबहार गाने दिए। रुक जा ओ जाने वाली फिल्म कन्हैया जो कि आई थी 1959 में, मुकेश साहब ने हमेशा की तरह राज कपूर के लिए प्लेबैक दिया। संगीतकार रहे शंकर जयकिशन। मुकेश साहब ने इस फिल्म में 3 मेमोरेबल न भूलने वाले गाने दिए।

मन्ना डे एक ऐसे कलाकार रहे कि हर एक कलाकार के कैरेक्टर को अपने आवाज में ढालने की वो क्षमता रखते थे। हालांकि फिल्म 420 में मुकेश साहब ने राज कपूर के लिए प्लेबैक दिए, लेकिन एक ऐसा गाना भी रहा जहां मन्ना डे के साथ आवाज मिलाई आशा जी ने। आइकॉनिकल क्लासिक सॉन्ग मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

राज कपूर एक ऐसे कलाकार रहे जिनकी लगभग सभी फिल्में हिट सुपरहिट साबित होती रहे। उनमें से एक फिल्म फिर सुबह होगी 1958 के ये मूवी रही, जहां राज कपूर के ऑपोजिट एक नई कलाकार माला सिन्हा नजर आई। 1958 के यानी कि 1958 के फोर्थ हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी साबित हुई। वो सुबह कभी तो आएगी एक इमोशनल गाना रहा। संगीतकार रहे द ग्रेट खयाम साहब और गाने को लिखा साहिर लुधियानवी ने। मुकेश साहब के साथ इस गाने में आवाज मिलाई आशा भोसले ने।

अनगिनत सुपरहिट फिल्मों में 1964 में रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा संगम एक ऐसी फिल्म रही फिल्म मेकर प्रेरित होते रहेंगे. डायरेक्टेड प्रोड्यूस्ड एंड एडिटेड बाय द ग्रेट राज कपूर साहब. ये हुआ आर के स्टूडियो में. इन सब के अलावा राज कपूर इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर नजर आए. उनके साथ रही उस दौर के बेहद ही हसीन एक्ट्रेस विजयंतीमाला. राजेंद्र कुमार भी इस खूबसूरत जोड़ी के साथ मौजूद रहे बतौर लीड एक्टर. फिल्म संगम में खास बात ये रही कि ये रही द फर्स्ट कंप्लीट फिल्म इन कला. हसरत जयपुरी के खूबसूरत कलाम पर संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और आवाज वही जो बनी रही राज कपूर की आवाज मुकेश साहब. ओ महबूबा.

पैट्रियोटिक फिलोसॉफिकल मूवी जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर ने इस फिल्म के जरिए भारत की शान को पेश किया और इसे फिल्म का एक बहुत ही मशहूर गाना जिसको गीत से सजाया शंकर जयकिशन ने, गीता दत्त, मुकेश साहब, महेंद्र कपूर, लता जी और मन्ना ने एक साथ मिलकर भारत की शान में इस गाने को पेश किया।

सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के समाचार बुलेटिन में स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच एल नीनो के तेजी से मजबूत होने की संभावना, इससे दुनिया के कई हिस्सों में गर्म की लू और सूखे

0: तथा भारी बारिश जैसी चरम मौसम घटनाओं का खतरा। मॉरिशस में औसत पैदावार के विस्तार के तहत 11 समुद्री स्थलों के लिए जल्द टेंडर्स जारी किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी में निवेश बढ़ाना है। सितंबर में पोर्ट लुई थिएटर 6 वर्षों के नवीनीकरण के बाद फिर से दर्शकों के लिए खुलेगा। लगभग 475 मिलियन रुपए लागत तक के कार्य किए गए। विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 का रोमांच शुरू हो गया है। हर मुकाबला निर्णायक बन चुका है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने जा रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी। 1 जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है। ये बजट 2026-2027 में शामिल कदम है, जिसका मकसद है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार दर्ज हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: केविन 48 साल के हैं और 8 बच्चों के पिता हैं। स्थायी नौकरी मिलने से पहले वे सोशल रजिस्टर में पंजीकृत थे और NEF की सहायता का लाभ प्राप्त कर रहे थे। वे कहते हैं 5000 रुपए का पेंशन मिलता था। बच्चों को स्कूल के सभी सामान मिलते थे, यूनिफॉर्म, बैग्स, जूते आदि। हाल में NEF से मदद मिली। फिलहाल कागितास लगभग 5000 परिवारों की सहायता कर रहा है, लेकिन इनमें से बहुत कम परिवार सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस SRM के लिए योग्य हैं। कागितास की महासचिव पैट्रिसिया अदेल फेलिसिते कहती हैं,
2: Bien souvent, ça bande du monde là. Je t'ai caoté parce qu'il bande critère d'éligibilité.
1: कई लोगों को मदद नहीं मिलती क्योंकि इसके योग्य बनने के लिए मापदंड बहुत सख्त हैं। जैसे अगर कोई अविवाहित माता अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही है तो वो SRM में शामिल नहीं हो सकती। कागितास में रात बिताने के शेल्टर हैं, बेघर लोगों का स्वागत करते हैं, वे भी SRM में शामिल नहीं हो सकते। बजट में की गई घोषणा के अनुसार 1 जुलाई 2026 से सोशल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए योग्य बनने की नई एलिजिबिलिटी थ्रेशहोल्ड बढ़ा दी गई है। जूनियर समाज सुरक्षा मंत्री कुगान पगापेन कहते हैं, बजट से पहले SRM के मापदंडों पर बहुत विचार विमर्श किया गया, जिन पर करीब 3 वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया था। एक वयस्क के लिए 3575 से 4000 रुपए हो गया है और अगले साल 1 जुलाई से ये 4250 हो जाएगा। इस कदम से अधिक परिवार सामाजिक सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकेंगे। फिलहाल करीब 5200 परिवार SRM के योग्य हैं। मापदंडों पर फिर से गौर करने पर ये संख्या करीब 7500 तक पहुंच जाएगी। 2300 परिवार SRM की सेवाओं से लाभ उठा सकेंगे। नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का भी सहयोग मिलेगा। फिलहाल हर महीने सरकार 25 मिलियन रुपए खर्च करती है इन परिवारों की मदद के लिए। नए मापदंडों से ये रकम दुगनी हो जाएगी। बजट में विकलांग लोगों के लिए दिए जाने वाले अलाउंस की समीक्षा की भी घोषणा की गई है। इस उद्देश्य के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।
0: मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी, जिससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पुतोदो के इस जल क्षेत्र में खेमराज पैसान पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से ऑयस्टर की पैदावार कर रहे हैं। वे उन दो ऑयस्टर उत्पादकों में से एक हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए अधिकारियों से एक बगासवा किराए पर लिया है। वे कहते हैं,
3: मैं
1: करीब 1 मिलियन ऑयस्टर की पैदावार करता हूं, जो गर्मी में बड़े होते हैं। हम जाल बनाकर समुद्र में हर जगह रखते हैं। 3 महीने बाद ये ऑयस्टर आकार लेने लगते हैं। तब ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वे ज्यादा नाजुक होते हैं। खेमराज अपने ऑयस्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मॉरिशस स्टैंडर्ड ब्यूरो के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। हर रोज उन्हें साफ करते हैं। जितनी पैदावार मैं करता हूँ वो काफी।

0: रही हैं, भविष्य में सरकार की फिर से मदद लेंगे। सिर्फ बागाशवा में पैदावार नहीं की जाती है, गहरे समुद्र में भी होती है, जिससे ज्यादा लाभ होता है, उन्हें ज्यादा खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। और इसके अलावा इस बागाशवा का उपयोग कैकड़ों, खासकर प्रसिद्ध गौले प्रजाति के पालन और क्लैम की सीमित स्तर पर पैदावार के लिए भी किया जाता है। कृषि उद्योग मंत्रालय के संचालन में आने वाले 9 बागाशवा में से फिलहाल केवल 2 ही कार्यरत हैं। इस क्षेत्र को गति देने के लिए कई नए उपायों पर काम किया जा रहा है। कृषि उद्योग, खाद्य सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी एवं मत्स्य मंत्रालय के कार्यवाहक सहायक निदेशक मनोज फाकू कहते हैं, EDB एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर काम कर रहा है ताकि अवसर की पैदावार में रुचि रखने वाले लोगों की मदद कर सके। 11 जगहों की पहचान की गई है, सभी परियोजनाओं को EIA से गुजरना पड़ेगा और सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करना होगा। प्रोत्साहन देने वाले इन उपायों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। साथ ही ब्लू इकोनॉमी के योगदान को बढ़ाकर GDP के 20% तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
1: आर्य समाज, रिपा के आर्य समाज की सदस्य कल एक साथ जुटी, वहाँ पर एक नए मंदिर के उद्घाटन के लिए विशेष पूजा की गई, साथ में वैदिक विधि विधान पूरे किए गए और सभी भक्तों को एक साथ जुटने का मौका इस पर मिला। ज़रा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: वैदिक मंत्रों और प्रार्थनाओं के पाठ के बीच रिपाई समुदाय के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। इलाके के दूसरे आर्य समाज मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके अध्यक्ष उदय कुमार गोरा कहते हैं, रिपाई आर्य समाज उतना सक्रिय नहीं था। करीब 9-10 साल पहले हमने इसे फिर से सक्रिय किया। हमारे पास अब एक छोटा मंदिर है जहां नौजवानों के बीच आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया जा सकता है। आध्यात्मिकता और श्रद्धा से भरे वातावरण में ये पूजा स्थल प्रार्थना, वैदिक मूल्यों के प्रसार और समुदाय को एकजुट करने के लिए समर्पित स्थान के रूप में स्थापित किया गया है। रिपाई आर्य समाज के सचिव अमिचंद करीमन कहते हैं,
2: यहाँ पर यज, महायज, बहुत से ऐसे गतिविधियाँ करेंगे जो कि सभी वर्ग के लोग के इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देना धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में अवगत करना। इन सब बातों के लिए हमने इस आर्य मंदिर का निर्माण किया और आज काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद हम लोगों ने इस मंदिर को खड़ा किया और हमारे लिए आज गर्व की बात है कि हम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त कर दिया।
0: पवित्र अनुष्ठानों से सजिए प्रतीकात्मक समारोह श्रद्धालुओं के अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है।
1: पहली बार के लिए मॉरिशस में मक्काल मुकर्रमा सोसाइटी और MBC के सहयोग से कुरान की तिलावत की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कंपटीशन जुलाई महीने के अंत में शुरू होगी। MBC में आज जुड़े सदस्यों के साथ इसकी तैयारी के लिए सब इकट्ठा हुए।
3: प्राप्त 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस में से 13 से 17 साल के 36 नौजवानों को 2026 कुरान खानी मुकाबले के 4 प्रिलिमिनरी राउंड्स में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। मुकाबला शुरू होने से पहले MBC में एक इंटरैक्टिव सत्र लगाया गया ताकि प्रतिभागी कंपटीशन की शर्तें बेहतर समझ पाएं और अपनी तजवीद बेहतर करने पर काम कर सकें। जूरी के सदस्य शेख मोहम्मद सलमान बलाकी कहते हैं,
4: कुरान
3: पाक की आयतें पढ़ने का एक सही तरीका होता है जिससे कि उनके मायने वाज़े हों और न बदलें। इसलिए हर लफ्ज, ठहराव, आवाज के उतार चढ़ाव की अहमियत होती है और इनका पालन करना लाजमी होता है। कारी मंसूर कहते हैं,
5: कुरान

0: Guida et où est la so place que tu veux bizarre faire work. Pas qu'il y ait commencé n'importe quoi de ça et où arrêter n'importe quoi de ça.
1: प्रतिभागियों को कुछ सलाह दिए गए जो वे अब अपनी तजवीद बेहतर करने के लिए अमल में ला सकेंगे मॉरिशस में पहली बार हो रहे इस मुकाबले का मकसद है कुरान पाक की तिलावत को फरोख देना मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी के प्रेसिडेंट अनस अशरफी कहते हैं
2: Mais nous avons l'occasion, cette année-là, pour organiser ça. Et nous prenons MBC ensemble avec nous pour organiser ce programme-là.
1: MBC Urdu Desk est zimmedar Anwar Dast Mohamed dit.
3: Nous pensons que l'avenir, 13-17 के बजाय हम इसको ज़्यादा फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें और मैं सबसे पहले मुबारकबाद के हकदार हैं वो वालिदैन वो असातिज़ा वो उस्ताद और वो तमाम वो कैंडिडेट्स वो तमाम बच्चे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और मैं ये भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो इनामात रखे गए हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं पहला इनाम एक उमरा टिकट के लिए फुल पैकेज बोर्डिंग एंड लॉजिंग के साथ और दूसरा इनाम एक उमरा टिकट और तीसरा इनाम 25,000 नकद यानी कि कैश प्राइस और यही नहीं बल्कि तमाम जितने भी फाइनलिस्ट होंगे उनके लिए भी अलग अलग जो है तहाइफ रखे गए हैं
1: चार प्रीलिमिनरी राउंड्स 26 जुलाई 2 अगस्त 9 अगस्त और 16 अगस्त को लगेंगे इनका प्रसारण हर शुक्रवार को एमबीसी चैनलों पर किया जाएगा चौथे राउंड के बाद फाइनलिस्टों की घोषणा की जाएगी मुकाबले का फाइनल सितंबर में लगेगा
4: विश्व कप की बात करते हैं वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है कल मोरक्को की टीम की भारी जीत हुई कनाडा को उसने 3-0 से हराया जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई जरा विस्तार इस रिपोर्ट में
5: मेजबान टीम कनाडा का वर्ल्ड कप का सफर पूरा हुआ मोरक्को ने कनाडा को रोका मैच की शुरुआत में कनाडा हावी था मोरक्को पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा मोरक्को अपना अनुभव दिखाने लगा सेकंड हाफ की शुरुआत में ही हकीमी के फ्री किक पर उनाही का गोल इस पहले मौके पर पहला गोल मोरक्को ने कनाडा को चौंकाया इसके बाद जैसे मार्च की टीम राह भटक गई ऐसे में और एक गोल बनता है फिर से उनाही का गोल यहां से कनाडा कुछ खास नहीं कर पाया ब्राहिम जाज के पास पर एक गोल बनाइए दो शॉट दो गोल मोरक्को के लिए दो गोल काफी नहीं रहे अंत में रहीमी कनाडा पर कोई रहम नहीं दिखाता काउंटर अटैक पर इंजरी टाइम में मैच का तीसरा गोल कनाडा 0 मोरक्को 3 अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का सामना फ्रांस से होगा
4: विदेश समाचारों में अमेरिका के लिए आज का दिन बहुत ही खास है आज से 250 साल पहले अमेरिका को उसकी पहचान मिली एक ऐसे देश ने जन्म लिया जो आज की भी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है इस खास मौके पर आज वहां आतिशबाजियां हुई कई नई परियोजनाएं शुरू की गई और कई उद्घाटन हुए आज रैली के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ने भारी भीड़ के समक्ष अपना संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका का सपना वापस आया है जानते हैं मौसम का हाल दक्षिण पश्चिम से आ रहे सक्रिय बादल कल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 14 से 17 अधिकतम 19 से 22 जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके के करीब आ रहा है जिस वजह से इलाके में मंगलवार से ठंडी और तेज हवाएं बहने लगेंगी और मंगलवार से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कल सुबह सूर्योदय 6:46 पर शाम को सूर्यास्त 5:42 पर

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और टेक्निकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट ओपिमो में, फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट ओपिमो में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती शंकर, श्रीमती चंद्रावती शंकर पैदाश नाम रामलगन और जो प्रभावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विनोद शंकर के मकान फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट ओपिमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ओबीश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। इंदिरा गांधी रोड पे चिराफरे में, इंदिरा गांधी रोड पे चिराफरे में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री शिव कुमार बनिया, श्री शिव कुमार बनिया जो अश्विन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान इंदिरा गांधी रोड पे चिराफरे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पे चिराफरे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। स्कूल लेन पेटी जूली में, स्कूल लेन पेटी जूली में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वरलाल जगेसर, श्री ईश्वरलाल जगेसर जो पिंगो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी अनीता जगेसर के मकान स्कूल लेन पेटी जूली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। ब्रांच रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया में, ब्रांच रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री अख्तर हुसैन सुभाची, श्री अख्तर हुसैन जनाब अख्तर हुसैन सुभाची जो हरश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान ब्रांच रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया से उठाकर दफनाने के लिए अमोगी का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। सिमेट्री रोड प्लेनमायो में, सिमेट्री लेन प्लेनमायो में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री वितेश बुधन, श्री वितेश बुधन जो निश्ले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल शाम 4:30 बजे उनकी माँ संध्या राबूजी के मकान शिमे सिमचिया प्लान मायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 4:30 PM। कालीमाई रोड रिविया जुहांपा में, कालीमाई रोड रिविया जुहांपा में 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री अजागैन रंगासोमी, श्री अजागैन रंगासोमी जो अविसेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सीबी सुरीनाम गांव और मोसलमो गुबिन सुरीनाम के ग्राहकों को सूचित करता है कि आगामी बुधवार 8 जुलाई 2026 के सुबह के 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 8 जुलाई 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक सीबी ग्राहकों को सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी इस असुविधा के लिए ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थित हैं। ये थी एक व्यक्ति सीबी की ओर से।
1: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio. Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

सारे छह बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओ, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री। और आज रविवार 5 जुलाई 2026, नए सोच कार्यक्रम आप लोगों के नाम हम करते हैं और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7 बजे तक। तो दीजिएगा साथ, दीजिएगा और कुछ भावगीत आप लोगों के नाम हम करते हैं। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, खेल मूवी से लिया गया।

रात के 7 बज चुके हैं। नमस्कार, श्रोता हूँ MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है, जहां आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ RM Free रेडियो। और आप सुन रहे हैं अभी धीरों की आवाज़ प्रोग्राम है, जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। और यहाँ पर मैं उषा कौर साथ देने के लिए 9 बजे तक हम साथ निभाएंगे, ये वादा रहा, और आप भी साथ निभाइएगा। और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5250620 और मैसेजेस ज़रूर आप भेज सकते हैं, नहीं, मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5250620 और कॉल कर सकते हैं 4028070। आपका दिन कैसा रहा, आप क्या कर रहे हैं, कल के लिए आपने तैयार क्या किया है, ये भी बता दीजिएगा। और गाना भी आपकी मांग पर हम चलाएंगे। और आज का जो पहला गाना है, अनु मलिक इश्क फिल्म से लिया गया, तो चलिए ये गाना अभिजीत की आवाज़ में

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

7:12 हुए हैं जहां दोस्तों आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और ये शाम जो है हसीन शाम सिर्फ रंगों से नहीं एहसासों से भी सजा करती है और कुछ शामें दिल में उम्र भर के लिए उतर जाती है। और आप लोग क्या कर रहे हैं हमें पता है, कुछ लोगों ने बताया है कि वो लोग इस समय फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। तो बस हम आपको कहेंगे डिनर के साथ साथ खूबसूरत गानों का मज़ा भी लीजिए और ये पल जो है हमेशा के लिए यादगार बनाइए। और यहाँ पर जगजीत सिंह की आवाज़ में सरफरोश फिल्म से लिया गया। चलिए अगला गाना सुनते हैं, खास कर सूरज सजादा जी के लिए। जी हैं, जो हमारे एक लिसनर्स हैं, हमेशा साथ देते हैं, हमेशा खूबसूरत गाने की मांग करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको याद दिला दें कि हम सिर्फ और सिर्फ 80s और 90s के गाने चला रहे हैं। तो जी हाँ, ज़रूर ये गाना जाएगा आपके नाम, आपके बेटा निशाल के नाम, पूरे BC100 फैमिली के लिए और हमारे पूरे MBC रेडियो मनोरंजन टीम के लिए। थैंक यू सो मच, आपको ये गाना चल पड़ा।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: सारे साथ बज चुके हैं दोस्तों 90s के जो गाने हैं सिर्फ सुनने नहीं जाते लेकिन महसूस किए जाते हैं हर लव्स में मोहब्बत और हर धुन में सुकून होता है और 90s के का जो दौर है भी क्या दौर था कैसेट चलती थी दिल मचलता था और गाने सीधा रूह तक उतर जाते थे तो चलिए अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं खासकर सुदेवी जी के लिए जी हाँ वो रहती है वाक्वा और गाना वो मांग रही हैं ललिता दीदी कुशल परिवार और साथ में सुनीता शोभा देवीना संगीता मालेगा के रहने वाले रामरतन परिवार और हमारे पूरे टीम के लिए थैंक यू सो मच आपको और ये गाना चल पड़ा आपके नाम

चलिए तूफान तूफान तूफान आया है और यहाँ पर ये गाना विश्व आत्मा फिल्म से लिया गया है और ये गाना खासकर हम चला रहे हैं स्वेनल की मांग पर। वो हमें सुन रही है इस समय और गाना खासकर वो मांग रही है भाई श्रावण, भाभी कीर्ति, अभिनव के यान्नाव या तिलक फैमिली और आंटी श्याम शरण जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम स्विट्जरलैंड।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 7:53 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन जी हाँ आरएम फ्री और आपको याद दिला रहे कि यहाँ पर हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं और इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं क्या बताएं यानी आपको ये प्रोग्राम पसंद है थैंक यू सो मच और आपका नाम हम ज़रूर लेंगे और यहाँ पर गाना खास कर हम चलाने जा रहे हैं गुलशन भोला के लिए फिल्म दरार का ये खूबसूरत गाना उनकी मामा प्रभा बहन दीक्षिता अयेशा और भोला फैमिली के लिए और ख़ासकर आरजे हंसिनी उनके नाम भी ये गाना हम चलाएंगे और साथ में यहाँ पर श्रद्धा लखनोट है जो हमें सुन रही है देख भी रही है लीज़ा आकाश गौतम है हेमा कुपेन लीज़ा और आपके जो नाम हैं कुछ नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही फनी है और अजमेर खान जी हाँ उनके लिए भी नमस्ते आपको और साथ में आनिस है जमाइका क्रॉसिंग है और माधुरी भी है रिद्वान और आप है दासकोल नीलिमा और विक्रम बिखी आपके लिए भी ये गाना जाएगा अनिल राजन कुजन जंडू जय आपके नाम सिरतन हसन जी आपके लिए भी और साथ में सानिश भी है मेहर है दिनेश गोपी आपके नाम भी और खासकर माया रामदोस के लिए तो चलिए सुनते जाइए और अगला गाना सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आज बज चुके हैं, आज बजकर दो मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर एक घंटा रह गया है आप लोगों के साथ बिताने के लिए। दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑन आरएम फ्री रेडियो। मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5250 6200 और फ़ोन कर रहे हैं ऑन 4028070। थैंक यू सो मच। और गाना हम चलाएंगे सैयारा फिल्म से लिया गया। जैसे कि हमने कहा 80s और 90s के गाने हम चला रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये जो नए गाने हैं बहुत ही हिट हुए हैं उनका भी हम चला लेते हैं। और यहाँ पर खासकर ये गाना जाएगा दीपशिका के लिए, जहाँ उनके मांग पर गाना उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनके सभी दोस्तों के लिए। और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा, आप लाइव टिकटॉक भी हमें देख सकते हैं आरएम फ्री रेडियो, हमारा जो पेज है आप उसको फॉलो लाइक कर दो और शेयर भी करो। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं शालिनी रोशन, गाना वो मांग रही हैं अपने हस्बैंड रोशन के लिए। और गंगा भी सुन बबलू है, आप भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तंजय सातिश है और साथ में है सारा, जी हाँ सारा हमें सुन रही हैं। रवि मार्कस है और आश है जो गाना मांग रही हैं अपनी बेटियाँ के लिए। विक्षा विदिशा जो 6 और 4 साल के हैं और हमें सुन रहे हैं, क्या बात है। इंदिरा रामधनी जी है, गाना मांग रही हैं अपनी बेटी प्रतिमा चेष्टा और पोती रैना के लिए। सैयारा का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं और स्वीटी के लिए भी ये गाना, प्रीति
2: कमजोर हो जाता हूँ।
1: राकेश जी है, गाना उनके लिए और डॉक्टर जिंगरी के नाम। हिमेश भी है और कुछ लोग हमें सुन रहे हैं फ्रॉम सुरीनाम और मलेशिया।

0: RM3 Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: हो ना जाए बर्बाद, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि प्यार में कोई बर्बाद ना हो जाए। प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को फिर से जीने को मौका देता है। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं अनीता जी फ्रॉम फिकाउ फ्लाक, और गाना खासकर वो मांग रही हैं अपने बेटे जहाँ पति का नाम है राज, उनके लिए बेटे अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, अशीमा, पोती हिमेशा, आदिया। और पोते अंश के लिए, और साथ ही साथ में यहाँ पर आशा भी है, हमें सुन रहे हैं, सुनील भेरवाल जी है, कविता डुलिप, आपके नाम भी गाना जाएगा, रानी जोईसूरी जी, हाँ गुड इवनिंग आपको, और शिल्पा भी है, शानवीर, संध्या है, ओवन भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, नमस्ते आपको। और आरजे प्रताप जी, हाँ हमारे जो कॉलीग हैं, हमें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, नमस्ते आपको। और गाना आप खास कर मांग रहे हैं रेहाना, संगीता और डॉक्टर अंजू के नाम, नास के लिए भी गाना जाएगा, और नीला राघु आपके लिए भी, और किसी ने गाना मांगे हैं अपने पति के लिए, सुभी, बेटी हंसिनी और हंसिका और करुणा, लेकिन आपने अपना नाम तो नहीं बताया, कोई बात नहीं, गाना हम चलाएंगे, किरण के लिए गाना, और जाद, जाद के लिए।

भी और सनवीर जो है गाना मांग रहे हैं सनवीर सोना सोनारी जो सुन रहे हैं फ्रॉम कनाडा संध्या कावी के लिए भी और अनिता पियर्टो भी है थैंक यू सो मच चलिए गाना एंजॉय कीजिए फिल्म का नाम है गरम मसाला उदित नारायण की आवाज़ में

चलिए ताल से ताल मिलाते हैं सुर से सुर मिलाते हैं और कहते हैं ना यही संगीत है जब दो दिलों की आवाज मिलती है और यहां पर खास गाना हम चलाएंगे फॉर समवन वेरी वेरी स्पेशल और खासकर अमरजीत भिंडा आपके नाम सुनील जी बिंदिया मुटुस्वामी जो है रानी सनिया अंजलि चेटिया आपके लिए भी राम प्रीति शिवंश आपके लिए संजय बुडवा आपके नाम भी और निवेद के लिए भी

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता है। जी हाँ, ये सुनकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म से लिया गया है। ये गाना फिल्म बाजीगर से लिया गया। जी हाँ, कुछ लोग प्यार करते हैं और जताना नहीं जानते हैं। उनको पता नहीं है कि कैसे बोले उस इंसान को कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, अगर कोई है आपके दिल और दिमाग में तो उनको बताना बहुत ही ज़रूरी है। 8:25 हुए हैं और यहाँ पर कविता चन्नू है जो हमें सुन रही है। आपके नाम ये गाना हम चलाते हैं और देविन जो है गाना खास कर मांग रहे हैं अपने भाई अजय। आज वो 45 इयर्स के हुए हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू राकेश राम के सुन। आपके नाम भी गाना हम चलाएंगे, चंदन राज रई माँ बीबी। और साथ ही साथ में कानन के

चलिए गाना चल पड़ा और खासकर हम चला रहे हैं देविन जो है. अच्छा ताल का जो गाना आपने फरमाइश की है अजय भाभी हेमा निश आश्विन और ओम और खास जय के लिए और शावी के लिए भी हम गाना चलाएंगे. हरी बोल फ्रॉम होलैंड संगीता सुखारी आपके लिए भी कथीबा मौगा अस्सलाम वालेकुम आपको और हमारे सभी लिसनर्स के लिए और रियाना के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम फिनिक्स.

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए सिलसिला को हम जारी रखते हैं. नरेश भोला है, हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और वो रहते हैं साउथ अफ्रीका. नीलू के लिए भी गाना हम चला रहे हैं और साथ ही साथ में तनवीर खालिद फ्रॉम यूके और दीप जो है फ्रॉम स्कॉटलैंड, वेलकम टू यू. माला जरी है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आशा उषा सुकन है, आश्विम रामधनी है, तकर फिल्म से लिया गया कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में.

0: RM3 Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:40 को है और ज्यादा समय नहीं रहा है आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. यहाँ पर हम चलाएंगे गाना गाशल के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम पर्थ, और गाना खास कर वो मांग रही है तनु फैमिली, जिनके घर में पहला बच्चा जन्म हुआ है. सो हैप्पी बर्थडे. और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं रंभा जी सलीमा, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हाय आपको. और विजया लक्ष्मी है, वनक्कम आपको. और मनीषा सिटोहल, हेलो. रूबीना राम स्वामी गाना मांग रही हैं अपने हस्बैंड के लिए. और आ जाए रागावैन उनके नाम भी, और विमी के लिए गाना मांग रही हैं. फरजाना जो है योगेश, हेलो टू यू. और कविराज मोहन है, नमस्ते आपको. दागीना हेलो, कैसे हैं आप. और हमारी प्यारी सुदेवी जी जो हमें सुन रही है, नमस्ते आपको भी. और साथ ही साथ में करण गाना मांग रहे हैं फॉर मनीषा. तहजीब है और शिमला भी है. विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में और साथ में साइलेश जी जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम क्यूपी.

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: दिलों की आवाज प्रोग्राम जी हाँ कुछ ही देर में 8:50 होने वाला है और आप सुन रहे हैं आरएम फ्री रेडियो रेडियो मनोरंजन और जो लोग हमें सुन रहे हैं देख भी रहे हैं उनको कहेंगे धन्यवाद और यहाँ पर अफजल जो है हमें सुन रहे हैं फ्रॉम वाले डे फैट और आज उनकी बेगम का जन्मदिन है तो जन्मदिन मुबारक हो उनको और नाम है रियाना तो चलिए रियाना को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं अगला गाना हम चलाएंगे बजरंगी भाईजान फिल्म से लिया गया और साथ ही साथ में यहाँ पर हमें सुन रहे हैं देख भी रहे हैं तेज सनातन नमस्ते आपको और दागिना जो है जय भी हमें देख रहे हैं सुन भी रहे हैं और साथ में सुदेवी जी गाना मांग रही हैं अपने बेटे दीजेश के लिए और पूरे फैमिली कालिम के लिए भी गाना हम चलाएंगे और सालिमा जो है कविता अनु है नमस्ते विमी छाया अपने फैमिली के लिए और उनके जीजू के लिए गाना मांग रही हैं रेश शिवासानन के लिए भी

तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आप लोगों ने साथ दिया दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में, हमेशा हम आपका साथ देंगे। अभी के लिए उषा को दीजिए इजाज़त, हमेशा आप अपना आप हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द, और उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

रात के 9:02 हो गए बा सभी प्यारे श्रोतागण के हमार प्यारा नमस्कार स्वीकार करा जा आज हर रविवार के दिन और रात्रि में ता ठंडा गिरता तो हर खातिर भोजपुरी तड़का मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के ता अवश्य नंबर वा मिला ल और झट से मांग करा जा उषा तो हर संगे रात के 11 बजे ले नंबर वा घुमा ल 402-80-85 और आज का पहल का गीत सुना किशोर किमिया के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: छोटा लोग हमनी के देश में अनेकों भाषा बातें और हमनी के मौका मिलेला ढेर भाषा सीखे के। यही खातिर मॉरिशस के बोलल जाला हिंद महासागर के तारा, दुनिया के एगो छोटा स्वर्ग जहाँ पर एकता बाती। तो चला अगला गीत सुना जा नीरज गुप्ता मधु के गावल गीत और गाना सुनीता जी खातिर जो हमने के सुनाता क्यूपिप से गाना मांगा तो बन जा अपन खातिर और अपन परिवार खातिर।

9:26 शोटाल और गीतवन त बेशक सुंदर चला था तो हर पसंद के गीतवन के चलाए के ता हम के बहुत संतोष मिला था सब प्रकार के गाना भोजपुरी में है जा बजेला तोहरा धन्यवाद दे के ता खूबे मन करा था चला नीरज गुप्त माधु के गावल गीत सुना जा और गाना किरण जी खाते जोन रहिला काठोबोन और बखत हमने के सुनता

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

साथी लोगन आशा करत हैं या के तो लोग वर्ल्ड कप के मैच देखत हो जा आजकल त यही के चर्चा होता अगर तोहरा फेवरेट टीम अभी तक खेला था तो तोहरा बहुत बधाई हो और कभी कभी मौका मिली तो तोह लोग भी तनी फुटबॉल खेल लिया तो चल रात के 9:40 हो गल बा और ई गाना उन सभी लोगों खातिर जो न भी फुटबॉल मैच देखा था वंजा और गणपत सत्यम ईसन के गावल गीत खास कर रविंद्र जी के लिए जो रहते हैं जोन रहिला मेबर्ग तो चला ई गाना छोटे मोर तुहर नाम

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:50 हो गल बा और यहाँ पर ही माहिन जी जो हमने के सुना था इबखट और गाना मांगा था वंजा बगल गौरी के गावल गीत और मामा पापा और अगुआ तो चला तो साथी लोग ना आशा करत है कि ये कार्यक्रम तोरो पसंद आवा था और कल एगो नया सप्ताह शुरू हो जाए एकर खातिर तोहरा बहुत साहस की जरूरत पड़ी अपन कर्तव्य निभाइय और अपन पर विश्वास रखिया विश्वास सचमुच चमत्कार कर देवेला

और ये प्रोग्राम हुआ खूब एंजॉय करा तवंजा और अगला गीत मांगा तवंजा दीदी ललिता कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा दिवीना मालेंगा के सभी रामरतन परिवार खातिर और कृषि के गावल गीत बरकी मसाला पीसेला और मंजली फराता बेलेला तो चला ये गाना सुना जा कृषि के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का
1: रविवार के रात बा और ताली तू भी मारो हो चल अगला गीत सुदेवी जी खातिर जो हमने के सुनता वाकवा से और

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:15 बज कल बा छोटा लोग खुशी पाए के पीछे लोग कभी पूरा जीवन बिता देवेलन जितना तो हर पास बातें उनकर से आप संतोष न करेला बड़ा खुशी के इंतजार करेला पर छोटा छोटा चीज में खुश रह के सीखला बाद में काम आए तो चला अगला गीत कुनाल बाबूलाल के गावल गीत और गाना खासकर देवानंद जी जो हमने के सुनताई बखत रोजिल से और गाना मांगा था वंजा अपन पत्नी सुरेखा खातिर और बीती आशनी खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: साथी लोगन हमेशा बोलीला कि तनाव बहुत खतरनाक है। तनाव से तोहरे नहीं बुझाए कब कैसन बीमारी धर लेलक। तनाव के दूर भगावा संगीत और खेलकूद में रुचि बढ़ावा, जीवन में खुशी के रंग भर जाए।
2: हंगामा
1: करीला सा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहरों पर रोशन सरासिन के गावल गीत और गाना जितना कोई के इबखत काम करन करत हवन जाए कर खातिर और खासकर रॉय जी खातिर जो न रहेला मोताबा और इबखत हमने के सुनता ये गाना कर खातिर और एक परिवार खातिर।

0: दुनिया
1: सुनवा बसा तू आसे काम पड़ल वहां।

रात के 10:51 हो गए बा कितना जल्दी तो हर भोजपुरी तर का प्रोग्राम समाप्त हो गए इतना घर के साथ निभल एकर खातिर हृदय से धन्यवाद बा अभी तक 11 बजे के बारो हम के तो हर सेवा में फिर से प्रस्तुत हो सर्दी के मौसम में कठिनाई होला उतने ही पर तो लोग के प्यार से हमनी के बहुत उत्साह मिलेला तविदा लय के समय आ गए बा नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुरानी बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का म्यूजिक लवर्स इस खूबसूरत से सुनहरे पल में, जहां पे आपकी यादों का खजाना खुलने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सी सफर में हमारा हम सफर बनने के लिए।

यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं। बिल्कुल जी, रेडियो मॉरिशस पर साथ बनिए रहे। संगीत का वो दौर जहां गीत दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, चलिए उसी दौर में चलते हैं वापस सुनहरे पल के साथ।

दोस्तों हमेशा याद रखना कि हर गीत एक ऐसा रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं। रेडियो मॉरिशस सर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पुरानी फिल्मों के अनमोल गीतों की सौगात। स्वागत है आपका सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत गानों का आप आनंद ले लीजिए।

वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहती हैं दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन वक्त बदल जाता है, लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। और आज उन्हीं गीतों के साथ गुजारेंगे कुछ खूबसूरत सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर, और वो भी किनिशा का साथ। जी हाँ, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुराने गीत, पुराने यादें, What a beautiful combination। लेकिन फिर भी हमेशा हम आपको याद दिलाते हैं कि जब ऐसे गीत हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में, तो वक्त जो है ना फिर से हम वापस लेकर आते हैं, उन्हीं यादों को हम दोबारा फिर से ज़िंदा कर लेते हैं और इन्हीं गीतों के ज़रिए आपको आपके उन खूबसूरत यादों को फिर से जीने पर हम मजबूर कर लेते हैं। तो चलिए जी, ये अगला नगमा स्पेशली हमारे दिल से आपके लिए।

सकता है कि आज आपका दिन ज़्यादा हेक्टिक था, हो सकता है कि आज आप कुछ ज़्यादा ही थके हुए हो। अरे मेरी जान, आप फिक्र मत करना, गिनिशा है ना साथ देने के लिए, आपकी इस थकान को दूर भगाने के लिए हम आ गई हैं, बिल्कुल। और इन खूबसूरत लम्हों के ज़रिए आई एम गोइंग टू मेक यू ट्रैवल टू टाइम, यस, बैक टू मेमोरीज, जहाँ पे आप और आपके उस खूबसूरत पल, बिल्कुल जी, दोबारा जीने के लिए आप तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन गाना कौन सा हम लेकर आए हैं अगला, चलिए खुद ही सुन लीजिए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: तो चलिए जी, आपको खूबसूरत गीत सुनाते सुनाते वक्त कैसे बीता चला गया हमें पता ही नहीं चला, अंदाज़ा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए गिनीशा को आप इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस

बेटी, ये भारत है या रोम? मंगल, बुध, जुमेरा,

और प्रेम का नाटक होता है उस घर को बस राम बचाए घर का।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो,
1: नहीं जी
0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
2: आई डोंट नो,
0: यू
1: मैं क्या बोलू जी,
0: यू टेल मी
2: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी
1: मैं क्या बोलू जी।
0: ओ बाप,
2: अल्लाह,
0: दादाजी
1: जी, मेरी बात तो सुनो
0: बेटे।
1: ओ बाप, पिताजी मेरी बात तो सुनो,
0: मेरी बात तो सुनो
1: बेटे, मेरी बात तो सुनो।
2: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
3: रेडियो मॉरिशस
4: 800 किलोहर्ट्ज पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
4: रेडियो मॉरिशस,